मीडियम वेव 266 दशमलव 66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 जून सन 2026 है। इस वक्त सवेरे के 5:56 हो चुके हैं। आज की हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 6 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और

0: मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत वंदना।

एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि फैसला जब ईश्वर का होता है तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कार्यक्रम वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को परवीन का नमस्कार। आइए करते हैं सुबह की शुरुआत कार्यक्रम वंदना के साथ।

धरती पर बारिश की बूंदे बरसे, सबके ऊपर आपका प्यार बरसे। गणेश जी से बस यही दुआ है, आप खुशी के लिए नहीं, खुशी आपके लिए तरसे।

शुभ बुधवार आपके दिन को मंगलमय बनाने के लिए एक सुंदर अभिवादन। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना आप सुन रही हैं आकाशवाणी उदयपुर से। कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वो हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क क्यों देता।

अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता है। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है।

कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं। शुभ बुधवार है, गणेश जी की आराधना आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। कहते गणेश जी का है रूप निराला, चेहरा भी कितना भोला भाला, जिसे भी आती है कोई मुसीबत उसे इन्हीं ने तो संभाला।

इस अंतिम भक्ति रचना के साथ हमारा आज का वंदना कार्यक्रम बस यहीं तक। दीजिए अनुमति परवीन को नमस्कार।

वंदना, अभी आपने सुना। चलिए श्रोताओं, देते हैं आज के हमारे प्रसारित होने वाले आकर्षणों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 6:40 से श्री रामचरितमानस गान पाठ अंक 112 आज आपको सुनवाएंगे। 6:50 से आप सुनिएगा खेती में आज, सवेरे 7 से सुनिएगा सदा बहार नगमे और 7:45 से कार्यक्रम होगा सुगम संगीत का। श्रोताओं देते हैं जानकारी हमारी आकाशवाणी मीडियम वेव और एफएम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की। सवेरे 8:30 से आप सुनिएगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, हमारे दोनों चैनल्स पर एक साथ। सवेरे 9:30 से आकाशवाणी उदयपुर से आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इस कार्यक्रम की प्रायोजकता रहेगी NCERT की। सवेरे 10 से कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत, साथ ही साथ आनंद ले सकते हैं राजस्थानी लोक गीतों के कार्यक्रम गोखड़ा खा सवेरे 11 से। 11:30 से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, और अगर लुत्फ उठाना है फिल्म संगीत का तो आपको जुड़े रहना है ठीक दोपहर 12 से। श्रोताओं दोपहर 1:05 से कार्यक्रम होगा महिलाओं का महिला जगत, जहां बात होगी जरा सोचिए पर, की जाएगी चर्चा और दी जाएगी कामकाज की बातों की जानकारी। दोपहर 1:45 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत विकास चर्चा, विकास चर्चा का आज का विषय रहेगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इन नक्सल एरिया। दोपहर 2:30 से किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा कृषि जगत का। संध्या 5 फिर से होगा कार्यक्रम युववाणी का, जो कि हमारा दैनिक कार्यक्रम है। ये दोनों चैनल्स पर आप एक साथ सुनेंगे FM और मीडियम वेव पर। श्रोताओं बात करते हैं संध्या के कार्यक्रम की, 6:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का। से सुनिएगा जयपुर से जिले की चिट्ठी, 6:45 पे होगा समय राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का, और संध्या 7 से आप सुन पाएंगे ICC वीमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड के बीच लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

तो श्रोताओं, 6:40 हो चुके हैं और ये समय होता है आपको रामचरितमानस गान पाठ सुनवाने का। आज हम सुनेंगे 112 अंक।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान पाठ। आकाशवाणी का यू उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 6:50 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम खेती में आज का।

खेती में आज होने वाला हंगले किसान भाई बहनों ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जून रो महीनो चाल रो है और अब देखो आप ही थोड़ा दम में खरीफ री फसला ने उगावंगा सा। और खरीफ फसला ने उगाऊ पहली देखो, खरीफ फसला में बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है और फसला में बीज उपचार करी लगभग 8-10% उत्पादन आप ही बढ़ाई जा सका सा। फसला री उत्पादकता में बढ़ोतरी करवा वाते आवश्यक है कि फसला में कीड़ा है बीमारियां रो प्रकोप नहीं वेवे। अंडे वाते आप ही सीड ड्रेसिंग ड्रम द्वारा बीज उपचार कर सका सा। अब आप ही बात करा कि देखो बीजोपचार रो लाभ कई वेवे, तो बीजोपचार रो लाभ वेवे शीघ्र अंकुरण वेवे, अंकुरण क्षमता में वृद्धि भई जावे, उत्तम पौधा तैयार वेवे, अच्छी गुणवत्ता री अधिक उपज आपने मल्ले, दलहनी फसला री ग्रंथिया में वृद्धि वेवे, विपरीत परिस्थितियां में भी स्वस्थ और एकसार विकास करे सा, स्वस्थ और पूर्ण विकसित जड़ा भी वेवे, अंडे अलावा फसलारी बीज और भूमि जनित रोगों सुरक्षा भी वेवे और आपनी जा भी लागत है बनी पे ज्यादा ज्यादा मुनाफो वेवे सा। फसलारी उत्पादकता में बढ़ोतरी करवारे वाते फसलारे कीड़ा बीमारिया री प्रकोप कम वेवे अणि उद्देश्य आप ही देखो बुआई पहली 100% बीजोपचार करा सा और यो अपने वाते बहुत ही ज्यादा जरूरी वेवे सा। बीज उपचार करता समय आपने ध्यान राखनो है कि FIR कर्मरो अवश्य अपने ध्यान राखनो है। बीजा ने सबों पहली फफूंद नाशकों पचे कीटनाशकों और सबों लास्ट में आपने संवर्ध यानी कि कल्चर उपचारित करनो है सा। खरीफ फसला में लागवा वाली बीमारियां और वंडी रोकथाम और नियंत्रण रे वाते आप अगर फसलवार बीजोपचार री तकनीक विधि और जानकारी री बात करा और सबों पहली अगर मक्का री बात करा तो देखो बुआई पहली अनुपचारित बीज ने 3 ग्राम थाईग्राम 75 WP प्रति किलो बीज री दर मिलाई नापी बीजोपचार कर सका सा और पचे बुआई करा सा। तुलसीता रोगों प्रकोप वाला क्षेत्र में बीज ने अपने 4 ग्राम मेटालेक्सिक देहिक कवकनाशी प्रति किलो बीज री दर उपचारित अवश्य करनो है सा। बाजरा री बात करा तो देखो गूंदिया नियंत्रण रे वाते 20% नमक रे घोल 5 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक को बीज ने 5 मिनट तक अपने डुबोनो है। हिलाइन पचे हल्का बीज व कचरा ने हटाइन साफ करीन पानी में धोइन पचे बीज ने छाया में हुकावनो है। दीमक री रोकथाम रे वाते 8.75 मिलीलीटर इमिलियो क्लोरोपीड 300 FS प्रति किलोग्राम री दर बीज ने उपचारित करनो है सा। बीज जनित रोगारे नियंत्रण रे वाते 1 किलो बीज ने 3 ग्राम थायरमु उपचारित करनो है सा। मूंगफली री बात करा तो बीज जनित रोग जैसे कि कॉलर रेट यानी कि जने आपी गलकट का सा बनियों बचाव रे वाते 1 किलो बीज ने 3 ग्राम थायरम 75% WP या 2 ग्राम मैंकोजेब 75% WP उपचारित अवश्य करनो है। अंडे अलावा देखो आपी ग्वार री बात करा तो देखो अंगमारी रोग री रोकथाम रे वाते बुआई पहली आपने प्रति किलोग्राम बीज ने 250 ग्राम PPM एग्रीमाइसिन यानी कि 1 ग्राम 4 लीटर पानी में घोल में 1.5 घंटा भिगोइन उपचारित जरूर करनो है सा। जड़ गलन रोग रे नियंत्रण रे वाते बीज ने अपने कार्बेंडेजियम 50% WP 2 ग्राम प्रति किलो री दर बीज उपचार करनो है सा। सोयाबीन री बात करा तो बीज बोवो पहली बीज ने 3 ग्राम थायरम 75% WP या 2 ग्राम कार्बेंडेजियम 50% WP द्वारा बीज उपचारित करनो है। फसल में जड़ गलन बीमारी नियंत्रण रवाते 6-8 ग्राम टाइकोडर्मा जैविक फफूंद नाशी प्रति किलो री दर उपचारित अवश्य करनो है सा। अब आप ही उड़द और अन्य खरीफ दलहन री बात करा तो बुआई पहली आपने बीज ने 3 ग्राम थायरम 75% WP या 1 ग्राम कार्बेंडेजियम 50% WP प्रति किलो दर उपचारित अवश्य करनो है सा। अणि मीना में देखो अबे आपने कशा कशा काम करना है वंडे बारे में बात करा और सब पहली देखो फसला रे उत्पादन री बात करा तो देखो सिंचित मूंगफली री बुआई रो उपयुक्त समय जून माह रो प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह तक है और मिट्टी री जांच रे आधार पर अंतिम सप्ताह पहली आपने प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम आपने मिलावनो है। मूंगफली रे खेत में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम फॉस्फेट और 15 किलो नत्रजन 130 किलो DAP या 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 33 किलो यूरिया जो है बुआई पहली नाइलेर में उरीन आपने देनो है सा। फास्फेट

त्रिपूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा कियो जय सके सा। और मूंगफली में गलगट यानी कि कॉलर रोट रोग बचाव रे वाते बुआयू पहली अपने प्रति किलो बीज ने 3 ग्राम थायरम 75% WP या 2 ग्राम माइनकोजेब उपचारित करनो है सा। रासायनिक फफूंद नाशी रो उपयोग जो है कम करनो, बीज ने थायरम 1.5 ग्राम और टाइकोडर्मा 8-10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और राइजोबियम कल्चर 3 पैकेट प्रति हेक्टरी दर उपचारित करीन बुआई अपने करनी है। अंडे लारे इस बुआई रे पहली अपने टाइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टरी दर 100 किलोग्राम गोबर खाद में मिलेन भूमि में मिलावनो है सा। मूंगफली री फसल में सफेद लटरी रोकथाम रे वाते क्लोथियनिडिन 50 WDG 2 ग्राम प्रति लीटर किलोग्राम जो है अपने उपचारित करीन बीज वावना है सा। बीज री 2 घंटे तक छाया में सुखाइन बुआई करनी है। कपास में सफेद मक्खी ग्रे वीविल जोसिड और थ्रिप्स रे नियंत्रण रे वाते कीट दिखाई देवा पर डाई मिथियोड 30 EC दवा या मिथाइल डेमोटेन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर रो छिड़काव करनो है या मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण या 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर बुरकाव करनो है सा। अबे आप ही बागवानी री बात करा तो देखो नींबू वर्गीय फलदार पौधा में फल गिरवारी समस्या री रोकथाम रे वाते प्लेनोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी रे गोल में अपने मलेन पर से छिड़काव करनो है सा। आंवला में बोरेक्स रो 0.4% 4 ग्राम प्रति लीटर पानी और जिंक सल्फेट रो 0.2% यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रो अपने गोल वणे पचे छिड़काव करनो है सा। अंगूर रो जल्दी पाकवा और मिठास बढ़ावा रे वास्ते एथिफोन 50 मिलीलीटर बोरेक्स 100 ग्राम 100 लीटर पानी में गोल वणे पकवा रे 15 दिन पूर्व अपने छिड़काव करनो है सा। अणी टाइम पे सिंचाई पूर्णतः अपने बंद राखनी है सा। अबे आपी सब्जियां री बात करा तो देखो भिंडी री खरीफ फसल री बुआई जून माह में अणी टाइम पे अपने करनी है। भिंडी री अर्का अभय परभनी क्रांति पूसा मखमली पूसा सावनी अर्का अनामिका किस्मारो 10-12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दर अपने बुआई करनी है सा। कुकुरबिट्स बैंगन और टमाटर में माइट्स री रोकथाम रे बात है मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर या डायकोफाल 18.5 EC दवा 1.25 लीटर प्रति हेक्टर दर अपने छिड़काव करनो है सा। कुष्मांड कुलरी सब्जियां में फल मक्खीरी रोकथाम रे वाते मेलाथियन 50 EC या डाईमिथियोड 30 EC 1 मिलीलीटर दवा रो प्रति लीटर पानी में प्रति हेक्टर दर छिड़काव करनो है सा। अणि हरा तेला और मोइला रे नियंत्रण में भी अपने मदद मिलेगा सा। टमाटर बैंगन और मिर्च री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौध रो खेत री निश्चित दूरी पर अपने रोपण करनो है। मिट्टी री जांच रिपोर्ट रे आधार पर सिफारिश की गई खाद और उर्वरक रो भी अपने उपयोग करनो है सा। फूल गोभी री अणि माह में पूसा कार्तिकी पूसा दीपाली किस्मरी बुआई अपी कर सका सा। अंडे वाते 600-750 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टरी दरी अपने आवश्यकता पड़ेगा। बीजा ने कार्बोनडेजियम 1 ग्राम या कैप्टान 50% WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज हिसाब अपने उपचारित करीन नर्सरी में बुआई करनी है सा। अब आप ही पुष्पारे उत्पादन रिवाद करा तो वर्षाकालीन मौसमी फूल जैसे कि गेंदा है बालसम है जीनिया है सूरजमुखी कॉक्सकॉम आदि री नर्सरी एनी टाइम पे आप ही तैयार कर सका। तैयार नर्सरी में झारा में नियमित सिंचाई आपने करतो रहनो है और खरपतवार ने भी निकालतो रहनो है सा। क्यारा में लागी थकी गुलदाउदी रे सकर्स ने आपने अलग करन लगावना है सा। गेंदा री वर्षाकालीन फसल री पौध रो खेता में आपने रोपण करनो है। कतारा रे बीच 60-90 सेंटीमीटर और पौधा रे बीच में आपने 45-60 सेंटीमीटर दूरी वणाई राखनी है। रजनी गंधारी फसल में प्रति स्पाइक फूलरी संख्या और स्पाइक री लंबाई बढ़ावा रे वाते GA3 जिब्रेलिक एसिड जन्य अपिका 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में गोल वणाई अपने पर्णीय छिड़काव अवश्य करनो है सा। किसान भाई बहनों देखो यो तो आप ही बात की थी कि देखो ये जून रो महीनो शुरू हो गयो है सा और अणी टाइम पे आपने कशा कशा कृषि संबंधी कार्य करना है सा और बातचीत तो और भी आप करवा री इच्छा है लेकिन घड़ी आड़ी देखा तो माने चालवारो टाइम भी रो है तो नंदू भाई ने आज्ञा दो सा राम राम सा।

कार्यक्रम अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का कार्यक्रम।

चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? चलिए हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में पहला नगमा उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म दिलवाले से।

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं सदा बहार नगमे। चलिए सुनते हैं अगला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम दिल ने जिसे अपना कहा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आकाशवाणी उदयपुर से। आइए सुनते हैं अगला नगमा, फिल्म दिल का रिश्ता, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की। म्यूजिक डायरेक्ट किया है नदीम श्रवण ने।

0: चलिए सुनते हैं फिल्म दिल जले से उदित नारायण अलका याग्निक को।
1: वो जिस जमीन पे पैर रखती है वो जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।

श्रोताओं, सदाबहार नगमे में आइए सुनते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं। फिल्म का गीत आवाज़ है अनुराधा पोडवाल की और इस गीत को कंपोज किया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, सदाबहार नगमे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म दिल चाहता है, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िए,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
6: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
5: अरे वही अपना 60 रुपया।
6: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
5: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
6: और दूसरा?
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
6: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
7: श्रोताओं, सदाबहार नगमे का ये आखिरी नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म धर्मात्मा से। इस गीत को कंपोज किया है कल्याण जी आनंद जी ने, और सदाबहार नगमे से आपकी दोस्त परवीन को दीजिए इजाजत।

सदाबहार नगमे अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7:45 हो चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए सुनते हैं रंजना भूषण की आवाज में उनके द्वारा गाए हुए ये गजल।

0: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: सुगम संगीत का आनंद अभी आपने लिया। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 8 बजने को है। लीजिए अब सुनिए कुछ ही पलों में समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर

0: सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय

0: पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA is committed. NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
5: And we will ensure that the examination is conducted in a flawless manner.
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखा

0: आने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect

0: जब आप दुखी होते हो तो जीवन आप पर हंसता है, जब आप खुश होते हो तो जीवन आप पर मुस्कुराता है, लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हो तो जीवन आपको सलाम करता है। तो श्रोताओं, हम भी आपको सलाम करने और लेकर हाजिर है प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का नमस्कार उदयपुर, जहां होता है ज्ञान और मनोरंजन का संगम। तो चलिए बताते हैं, आज इस प्यारे से सफर पर आपके साथ होंगे आपके हम सफर। मैं हूं आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ हैं
1: अनीता।
0: तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और नमस्कार के साथ ही परवीन, अपने श्रोताओं को बता दें कि आज मिड वीक वाइज में क्या है खास।
0: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे टुडेज डायरी में महाराणा प्रताप जयंती पर, देंगे प्रमुख स्थानीय खबरों की जानकारी, T20 विश्व कप का अपडेट बताएंगे हमारे श्रोताओं को, और फीफा वर्ल्ड कप की क्या आज की अपडेट है। इंस्पिरेशन

0: उनमें आज हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की
1: और रोचक तथ्य में जानकारी देंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस के बारे में और अपने श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका भी देंगे श्रोता संवाद में। तो श्रोता हमें मैसेज करके बता सकते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। हमारे फोन नंबर है 9462697568।

0: महलों के वैभव को तजकर जो जंगलों में मुस्काया था, अरावली की कंदराओं को जिसने अपना घर बनाया था, अकबर की ताकत के आगे जो पर्वत बनकर अड़ा रहा, शीश कटा पर झुका नहीं वह वीर अकेला लड़ रहा। धन्य हुई मेवाड़ की माटी, धन्य हुआ वह राणा प्रताप, जिसके नाम से कांपता था खुद दिल्ली का सुल्तान आप। सदियों तक गूंजेगी दुनिया में उस महानायक की अमर कहानी, जो सिखा गया इस भारत को क्या होती है राजपूती शान पुरानी। भारत भूमि हमेशा से ही वीर पुत्रों और महान योद्धाओं की जननी रही है। इन्हीं महान सपूतों में से एक थे मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। उनका नाम इतिहास में अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति, वीरता और स्वाभिमान के लिए अमर है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंती बाई था। शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा इन्होंने बचपन में ही ली थी। मेवाड़ की संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय समाज से निकट संबंध इन्होंने स्थापित किए थे। 1572 में महाराणा मेवाड़ के गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। मेवाड़ की सुरक्षा, स्वाभिमान और जन कल्याण को सर्वोच्च इन्होंने प्राथमिकता दी थी। 18 जून 1576 को ऐतिहासिक बैटल ऑफ हल्दीघाटी में इन्होंने लड़ा था। महाराणा प्रताप ने अद्वितीय शौर्य, नेतृत्व और रणकौशल का परिचय दिया।
0: बात करें हम भामाशाह के योगदान की, तो भामाशाह ने अपना सर्वस्व समर्पित कर राज्य और सेना को नई शक्ति प्रदान करी। बैटल ऑफ दी वेर में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मेवाड़ की शक्ति और आत्मविश्वास को नया आधार मिला।
1: महाराणा प्रताप का जीवन काफी संघर्षमय

0: रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी मुगल सत्ता के सामने समर्पण नहीं किया। उन्होंने राजसी वैभव त्याग कर स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। युद्ध के बाद उन्हें परिवार सहित अरावली के जंगलों और पहाड़ों में कठिन जीवन बिताना पड़ा। अनेक बार भोजन का भी अभाव रहा, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा।
1: बिल्कुल अनीता, बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के जीवन से हमें बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य प्रेरणाएं भी मिलती है। अपने जीवन में उतार कर हम जरूर से सफलता पा सकते हैं। कभी हार न मानने का जज्बा था महाराणा प्रताप में।
0: उनका संघर्ष केवल सिंहासन के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की जनता और उनकी स्वतंत्रता के लिए था। वे अपने प्रजा के सुख दुख में सहभागी रहे थे। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सहयोगियों भील समुदाय और सैनिकों को संगठित किया था। भामाशाह और भील वीरों का सहयोग प्राप्त करना उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।
1: महाराणा प्रताप मातृभूमि से प्रेम, उनके लिए अपनी मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में समर्पित कर दिया। इससे हमें अपने देश और समाज के प्रति वफादार रहने की प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा की कथा नहीं बल्कि स्वाभिमान, कर्तव्य और अटल संकल्प का अमर उदाहरण है जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है।

0: अनीता नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हुजूर से गजेंद्र सिंह राठौड़ की विशेष बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज महाराणा प्रताप जयंती और इस अवसर पर हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और इनसे हम जानेंगे कि आज प्रताप जयंती के उत्सव पर किस तरह से राज परिवार इस उत्सव को मनाता है और क्या विशेष तैयारियां और क्या उनके दिनचर्या में परिवर्तन होते हैं। सर सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार सर।
2: धन्यवाद आपको के मुझसे बात करने के लिए और आपको और सभी आपके जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं और बधाई।
1: महाराणा साहब आप ये बताएं कि जैसे आज का जो प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है पूरा राष्ट्र इस उत्सव को मना रहा है लेकिन राज परिवार या आप वंशज के रूप में आप उस उत्सव को किस तरह से मनाते हैं या क्या विशेष अवसर इस दिन होता है जिससे ये और भी खास हो जाता है।
2: एक तरह तो ये खुशी की बात है कि जगह जगह पे महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। इसका मतलब यही है कि ज्यादा लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी है लेकिन जो ये सामूहिक तौर पर महाराणा प्रताप जयंती मनाने का जो कार्यक्रम है वे ये करीब 50-60 साल पहले शुरू हुए थे। उससे पहले तो हम अपने घर में ही जिनको मनाना था वो मनाते थे दिया धूप जला के और हमारे पूर्वज का ध्यान करके और श्रद्धांजलि इसी हिसाब से दी जाती थी। आज के तौर में जैसे जगह जगह पर मनाया जाता है तो हर साल कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम अवश्य होता है और उसमें भाग लेके महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है।
1: अगर बात की जाए महाराणा प्रताप के जीवन का ऐसा कौन सा संदेश है जो आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और इस अवसर पर इस बात को कहने से कितना आत्मबल मिलेगा युवाओं को।
2: युवाओं के लिए मेरे ख्याल से एक बात और एक शिक्षा और युवाओं के लिए सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लेकिन हम सबके लिए एक शिक्षा जरूर मिलती है कि अगर हम कोई भला उद्देश्य अपने मन में तय करें और उसके

0: प्रति हम अपने कोशिश जारी रखें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको सफलता बहुत आसानी से मिलती है। तो अगर हम एक भला उद्देश्य हो और अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। हमें बीच में कुछ रुकावट हो या संघर्ष हो तो हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम मन लगा के करते रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी।
1: प्रताप जयंती केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का पर्व भी है, आप इसे किस रूप में देखते हैं?
0: प्रताप जयंती, जैसे महाराणा प्रताप तो एक हमारे पूर्वज, मेरे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनसे वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं और सब दुनिया भर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। और मेरे ख्याल से अब मनाना एक बात है, लेकिन अगर हम उनके जो गुण हैं अगर उनको अपनाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से वही सही तरह की श्रद्धांजलि होगी। और यही तरीका अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं तो समाज के लिए बेहतर ही होगा।
1: अगर महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना को वर्तमान समाज के संदर्भ में हम देखें तो इसे इन सब भावनाओं को या इन सब विचार को किस तरह से जीवंत रखा जा सकता है?
0: राष्ट्र प्रेम तो हर जमाने के लिए लागू है, भले पुराने जमाने की बात हो, आज की बात हो, कि आने वाले कल की बात है, तो राष्ट्र प्रेम तो जरूरी है। और स्वाभिमान भी हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी बात तो है ही है। और एक और बात, अगर हम महाराणा प्रताप के अगर हम गुण की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने किस तरह से पूरे समाज और सब धर्म को साथ रखा और अपनी ओर से समाज और धर्म ने ये साथ निभाया भी है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम सब, जो खास तौर जो हम मेवाड़ में, हम इस बात को ध्यान रखें कि हम सब एक हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि काफी सामाजिक संस्थान है, तो सामाजिक तौर पर संस्थान जो काम करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रगति की बात करें, हमें सब एक होना चाहिए। और प्रगति तो हम सब साथ मिलकर ही कर सकते हैं, किसी एक समाज अलग आगे चला जाए और दूसरा पीछे रह जाए ये तो हो ही नहीं सकता। हमें सब एक ही रहना है और हमें सब मेवाड़ को सबको एक ही आवाज से बात करने की जरूरत है।
1: प्रताप जयंती के इस शुभ अवसर पर आप देशवासी या खास तौर से मेवाड़ के जितने भी निवासी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश एक तरह से यही है कि हम महाराणा प्रताप को याद करें और महाराणा प्रताप के जितने भी गुण हैं, हम सब गुण तो अपना नहीं सकते हैं, लेकिन जो गुण अपना सकते हैं उनको अपनाने की कोशिश जरूर रखें, क्योंकि यही एक सही श्रद्धांजलि होगी। और कल भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा की और आज भी अगर हम उनके गुण को अपनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी मदद आज भी हमारे जीवन में रहेगी।
1: तो आप थे महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और आज कार्यक्रम में प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर श्रोताओं को अपने संदेश और अपने विचार समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।
0: बहुत धन्यवाद आपको।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हुजूर से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।

0: तो श्रोताओं एक नज़र डालते हैं आज के मैचेस पर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पांचवा दिन पूरी तरह से ड्रॉ के नाम रहा। 15 जून कम मजबूत मानी जाने वाली टीमों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। सबसे पहले कैप वर्डे ने अपने रक्षात्मक खेल के दम पर यूरोपियन चैंपियन और 2010 के विश्व विजेता स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। इसके बाद बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे ने 1-1 से बराबर खेला। आखिरी मैच सबसे रोमांचक रहा, जहां ईरान और न्यूजीलैंड ने 2-2 से बेहद मनोरंजक ड्रॉ खेला। ईरान न्यूजीलैंड के इस मैच के साथ ही वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास दर्ज हुआ। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक ही दिन में 4 मैच ड्रॉ होने का यह वाकया 68 साल बाद हुआ, और इससे पहले यह अनोखा संयोग 15 जून 1958 को स्वीडन वर्ल्ड कप में देखा गया था। तो अनीता, बात करें आज के मुकाबलों की, तो ग्रुप जे में अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया, जो कि सुबह 6:30 खेल चुके हैं। ग्रुप जे में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जॉर्डन सुबह 9:30 का समय है। ग्रुप के पुर्तगाल वर्सेस कांगो रात 10:30 से मैच खेला जाएगा। ग्रुप एल में इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया देर रात 1:30 से मैच खेला जाएगा, और ग्रुप एल में गाना वर्सेस पनामा खेलेंगे तड़के 4:30 से।
1: और अब बात करते हैं T20 विश्व कप की। तो महिला T20 वर्ल्ड कप आज 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस दौरान खिताब की दावेदारी 3 बड़ी टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरेंगी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम दोपहर 3:00 से बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में भारतीय टीम शाम 7:00 से नीदरलैंड में भिड़ेगी। वहीं रात 11:00 से अफ्रीका और पाकिस्तान की टक्कर होगी, और इस धमाकेदार ट्रिपल हैडर में भारत और नीदरलैंड की टीमें T20 फॉर्मेट में पहली बार आमने सामने होंगी। इस दौरान पाकिस्तान पर 64 रनों की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली भारतीय टीम लगातार दूसरी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर डेब्यू कर रही नीदरलैंड की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में है, और टीम को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। मुकाबला हैंडलिंग के मैदान पर खेला जाएगा। और कल के मैच की अगर बात करें तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड के 5 विकेट से हरा दिया था। टूर्नामेंट के इतिहास में श्रीलंका की न्यूजीलैंड पर यह पहली जीत है। इससे पहले दोनों के बीच हुए सभी 7 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते थे। मौजूदा टूर्नामेंट में यह श्रीलंका की पहली जीत है, जबकि न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी बार हार झेलनी पड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 150 रन का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
0: क्या बात है अनीता, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी। चलिए अब रुख करते हैं स्थानीय खबरों पर। तो राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सफलता मिली है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कि टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अगले 8-10 दिनों में इसका बजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसलिए नए दर्जे से अरावली क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण होगा और इको टूरिज्म के नए रास्ते खुलेंगे। और यह नया टाइगर रिजर्व राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों के अरावली रेंज में

0: फैला हुआ है
1: जी। और भारतीय लोक कला मंडल में 6 मई से चल रही 40 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन आज होगा। इसके तहत प्रसिद्ध साहित्यकार मणि मधुकर रचित नाटक खेला पोलमपुर का मंचन होगा। और यह नाटक सत्ता शोषण और जन सामान्य के संघर्ष पर आधारित एक सशक्त व्यंग है। इसका मंचन लोक कला मंडल के मुक्ताकाशी रंगमंच पर शाम 7:45 पर होगा, जिसमें आम जनता का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

अनीता, हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि आज का जो सेगमेंट है वो श्रोता संवाद का सेगमेंट है। हमारे कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को कैसा लगता है वो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, और हमारा नंबर रहेगा 9462697568 पर। और कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे जयपुर केंद्र, जहां से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस योजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

0: इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोद्रा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि NTA परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु

0: मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
1: प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी। प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 9:10 हो रहे हैं और आप सभी का एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपकी दोस्त परवीन।
4: और मैं हूं अनीता। और श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में अगर श्रोता हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9462697568 पर।

0: इस जीवन में सबसे बड़ा माँ का ही प्यार है, वही मंदिर, वही पूजा, वही सारा संसार है। माँ कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके अंदर कई किरदार छुपे होते हैं। पहले वो एक शिक्षक होती है, फिर दोस्त, और वक्त आने पर बच्चों की ढाल भी बन जाती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को शुरू से अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, अच्छी शिक्षा देती है। जीजाबाई जो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान हासिल किया, वो एक माँ ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ, मार्गदर्शक और स्वराज की प्रेरणा स्रोत थी।
1: बिल्कुल अनीता, जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ राजा नामक स्थान पर हुआ था। जीजाबाई को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा मिली थी। इनका विवाह अहमदनगर के सुल्तान के एक शक्तिशाली मराठा सरदार शाहजी भोसले से हुआ था।
0: वैसे तो जीजाबाई के कई बच्चे हुए, किंतु बड़े बेटे संभाजी और छोटे बेटे शिवाजी इतिहास में प्रसिद्ध हुए। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की वीर गाथाएं सुनाई। उन्होंने शिवाजी के मन में यह बात बिठा दी थी कि वे किसी विदेशी सुल्तान की चाकरी के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र स्वराज की स्थापना के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने शिवाजी को केवल एक युद्ध कौशल ही नहीं सिखाया बल्कि न्याय, धर्म और समाज के हर वर्ग का सम्मान करना सिखाया।
1: जीजाबाई ने पुणे का पुनर्निर्माण कराया, उन्होंने किसानों को फिर से बसाया, खेती को बढ़ावा दिया, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। और भी शिवाजी किसी संकट में होते तो जीजाबाई पीछे रहकर

0: पूरा साम्राज्य संभालती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी।
1: जीजा भाई का सपना साकार हुआ 6 जून 1674 को, जब उनके पुत्र शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की आधिकारिक रूप में स्थापना हुई। गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण देखने के केवल 11 दिन बाद ही 17 जून 1674 को रायगढ़ के पास पाचाड़ गांव में इस महान माता ने अंतिम सांस ली। माँ के स्नेह और त्याग का पृथ्वी पर दूसरा उदाहरण नहीं है, इसीलिए कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसी मातृशक्ति को शत शत नमन।
0: वीरांगना और साहसी जीजाबाई ने कभी विपत्तियों के आगे घुटने नहीं टेकी। उन्होंने अपने पुत्र को भी यही सिखाया कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मर मिटना ही सबसे बड़ा धर्म है।

0: और परवीन ये देखो कि हर दिन कुछ खास होता है, कोई ना कोई संदेश जरूर देता है। तो आज का दिन 17 जून का यानी हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भूमिकरण, मरुस्थलीकरण के खतरों और सूखे से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना।
1: बिल्कुल अनीता, चारागाह विश्व के सबसे विशाल लेकिन सबसे उपेक्षित परिस्थितिकी तंत्रों में से हैं। पृथ्वी की आधी से अधिक भूमि को कवर

0: करते हुए ये खाद्य सुरक्षा, जल चक्र, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इस दिवस के थीम की अगर हम बात करें तो हमारे इस दिवस की थीम है चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें।
1: जी, और इस वर्ष की थीम का मुख्य फोकस दुनिया के चरागाहों और घास के मैदानों को बचाने पर है, जो पृथ्वी की सतह से अधिक हिस्से को कवर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष है। इस साल की थीम के तहत तीन महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है। पहला है पहचान।

0: देशी और लोगों और स्थानीय समुदायों का सम्मान करना है जो पीढ़ियों से पारंपरिक ज्ञान के जरिए इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और तीसरा है पुनर्स्थापित करना। इससे सतत भूमि और जल प्रबंधन प्रथाओं में निवेश कर खराब हो चुके हैं और चरागाहों को वापस हरा भरा बनाना है।
1: बिल्कुल, बात करें इस वर्ष के आयोजन अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष के अनुरूप है, जो जागरूकता बढ़ाने, जिम्मेदार निवेश को प्रोत्साहित करने और चरागाहों और पशुपालकों की आजीविका की रक्षा करने वाली नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देने में मदद करता है। और यह सभी को इस बात की याद दिलाने का एक अनूठा क्षण है कि भूमि शरण, तटस्थता, समस्या का समाधान मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
0: और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि मिट्टी और जमीन को बचाकर ही हम भविष्य में पानी और भोजन के संकट को टाल सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे पास कुछ उपाय भी हैं अनीता। त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता हमें सभी को है। जल प्रबंधन हम कर सकते हैं, रेत की बाढ़, हवा के झोंकों आदि से होने वाले मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वीकरण की आवश्यकता भी हमें होती है।
0: और इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं के जो भेजे गए मैसेज हैं वो पढ़कर सुनाते हैं कि हमारे श्रोताओं ने हमें किस तरह के मैसेज भेजे हैं और क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो परवीन, आप बताएंगे कि क्या सबसे पहला संदेश किसने भेजा है?
1: कमल साहू लिखते हैं सेक्टर 4 से कि आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है नमस्ते परवीन जी, नमस्ते अनीता जी, जो आज जिलों की नगरी में उदयपुर में मोती मगरी में महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। वे हमारे रण बकूरे रहे हैं चित्तौड़गढ़ और हल्दीघाटी में। चित्तौड़गढ़ किला है, औरंगजेब से मुकाबला करते रहे, सर धड़ से कट गया फिर भी हार नहीं मानी। पुनः स्मरण कमल कुमार सुहाल का, कौशल्या सुहाल का, धारावती और श्वेता डिम्पी सुहाल का, जतिन सुहाल का, आनंद विहार से।

0: अनीता, एक और संदेश हमें मिला है। विक्रम जी कहते हैं, महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हें हमारा प्रोग्राम बेहद पसंद आया है। तो अनीता, हमारे लिसनर्स के लिए हम यही बोलेंगे जिन्होंने हमें मैसेज किए, उनको दिल से शुक्रिया।
1: और इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ अनीता और मेरे साथ थी
0: परवीन।
1: तो दीजिए इजाजत,
0: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 9:30 हो चुके हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरार

0: दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के

0: स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
1: अच्छा।
0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: मंगल पांडे
0: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी हुँ? लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही

0: बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे।
2: ओह।
0: इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
4: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
4: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ
4: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
7: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
6: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े,
7: बिल्कुल नहीं होने देंगे।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
8: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
9: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
10: जिंदाबाद,
9: इंकलाब
10: जिंदाबाद,
9: इंकलाब
10: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
11: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।

0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो!
3: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, bind a cow, take on a mountain high, Durant, hospital, Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?

0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
3: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
4: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
5: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
4: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
5: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
4: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
5: अच्छा माँ।
6: माँ।
5: लो, देवेंद्र भी आ गया।
6: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
4: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
5: ठीक है माँ।
6: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
5: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
6: ये देखो दीदी, ये मारा।
5: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
6: अरे ये मारा।
5: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
6: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
5: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
6: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
4: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
5: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
7: हमें अंदर आने दो।
5: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
5: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
7: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
8: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
5: अरे
8: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
5: हट
8: रास्ता से।
5: क्या हुआ? देखो जल्दी।
4: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
5: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
5: छोड़ दो।
4: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
8: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
4: अरे, अरे मेरे पास छोड़ो,
5: मेरी माँ को छोड़ो।
7: चुप चुप, आवाज से गाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
8: अरे सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
4: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
5: देवेंद्र।
6: हाँ दीदी।
5: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
6: अच्छा,
5: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
6: अच्छा।
5: हेलो।
7: हाँ बेटा, बोलो।
5: पापा।
7: हाँ
5: पापा।
7: हाँ बोलो बेटा।
5: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
7: कौन घुसा है?
5: माँ को बहुत मार रहे हैं।
1: अच्छा तुम घबराओ नहीं,

0: नहीं नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोस में को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है ठीक है?
1: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
3: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
4: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
5: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
4: देखो ना, सबकी जान
5: बहादुर है मेरी बच्ची।
3: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। लेकर आते हैं प्रोग्राम बस कुछ ही पलों में।

अगर मुश्किल घड़ी आए जीवन में तो कभी पीछे मत हटना। पीछे हटना कायरता की निशानी है, डटकर मुकाबला करना मेहनत की कहानी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत पर। चलिए सुनते हैं ये गीत, हमारे इस प्रोग्राम का पहला नगमा।

फिल्म मुगले आजम, जी हाँ, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम को अभी आपने सुना। हमारा प्रोग्राम है कुछ बातें और कुछ गीत, क्योंकि आज जो हम गीत आपके लिए लेकर आए हैं वो कुछ ऐसे नगमे हैं जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने भारतीय इतिहास के महान राजा महाराजाओं और उनकी भव्य रियासतों को कई शानदार फिल्मों के जरिए जीवंत किया है। इन फिल्मों में भव्य महलों के सेट, भारी भरकम पोशाकें और बेहतरीन विजुअल्स होते हैं जो दर्शकों को उस ऐतिहासिक युग में ले जाते हैं। इसीलिए हमने आपको हमारा जो प्रोग्राम है कुछ बातें कुछ गीत, उसका गीत आपको पहला जो सुनवाया था वो फिल्म मुगले आजम में सुनवाया था। बादशाह अकबर के शासनकाल में उनके बेटे सलीम और दरबारी नर्तकी अनारकली के बीच की अमर प्रेम कहानी है। फिल्म की सेटअप की अगर बात की जाए तो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में शुमार, और इस फिल्म का शीश महल सेट अपने समय में एक चमत्कार माना जाता था। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो फिल्म बाजीराव मस्तानी से है। 18वीं सदी के महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। महाराष्ट्र की संस्कृति और हैदराबाद के निजामी महलों के मिश्रण को सेट पर बहुत खूबी से दिखाया है, और दीवानी मस्तानी जैसे गानों के लिए भव्य आईना महल का सेट बनाया गया है।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: पापा
6: लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, हम आपको आज ऐसे गीत सुनवा रहे हैं जो अपने भव्य सेटअप की वजह से फेमस है। अब जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं मोहम्मद असलम और बॉनी चक्रवर्ती की आवाज़ में फिल्म जोधा अकबर से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो 16वीं सदी के मुगल सम्राट अकबर और उनकी राजपूत पत्नी जोधाबाई के प्रेम और राजनीतिक गठबंध की कहानी है। फिल्म के सेटअप की अगर बात की जाए तो आमेर और आगरा के किलों की भव्यता, मुगल दरबार का विहंगम दृश्य और विस्तृत युद्ध दृश्यों को पर्दे पर उतारा गया है। इसके कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी की बात की जाए तो ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक और अत्यंत भव्य ज्वेलरी थी।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। जी हाँ, हम आपको गीत सुनवा रहे हैं, ऐसे गीत जो अपने भव्य सेटअप के लिए काफ़ी फेमस हैं। चलिए बात करते हैं अगली फिल्म पद्मावत की। 13वीं सदी की शुरुआत में मेवाड़ साम्राज्य और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर

चलिए अब बात करते हैं फिल्म तान्हा जी, द अनसंग वॉरियर। जी हाँ, 17वीं शताब्दी का मराठा साम्राज्य और मुगलों के आलीशान महलों और किलों का सेटअप है। खासियत करें अगर इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म के भव्य किले, दरबार और भारी भरकम विजुअल इफेक्ट्स जो थे, इसे एक बहुत ही महंगा और रॉयल लुक देते हैं। चलिए सुनते हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म तान्हा जी से ये गीत।

चलिए बात करते हैं अगली फिल्म की, फिल्म देवदास। यह कोई ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, लेकिन 1900 के दशक के रईसों यानी कि जमींदारों और राजाओं की भारी भरकम हवेलियों और आलीशान लाइफस्टाइल पर आधारित है ये फिल्म। इस फिल्म की खासियत की हम अगर बात करें तो इस फिल्म का सेट इतना भारी और महंगा था कि इसने बॉलीवुड के सेट डिज़ाइन का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। आइए सुनते हैं कविता, श्रेया और के की आवाज़ में ये फिल्म देवदास से खूबसूरत सा नगमा।

तो श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत, ये जो प्रोग्राम है आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं, आप बने हुए हैं आपकी दोस्त परवीन के साथ। प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत, और जो बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है भारी भरकम सेटअप की, पोशाकों की, और ऐसी दौर की जहां राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था। अगली जो फिल्म है वो आधुनिक युग के राजघराने और महलों पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में आपको बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी और शाही महलों का सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ, फिल्म है प्रेम रतन धन पायो, आवाज श्रेया घोषाल की। चलिए ये गीत आपके सेट पर ये रहा।

श्रोताओं, बात करते हैं अगली फिल्म है कलंक। इस फिल्म में राजा महाराजाओं के दौर की तो नहीं, लेकिन 1940 के दशक के एक बेहद अमीर और रईस परिवार की कहानी है। इस फिल्म की खासियत की बात की जाए तो संजय लीला भंसाली की फिल्मों

की तरह ही इसका सेट भी करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें बेहद आलीशान हवेलियां, महल जैसी इमारतें और भारी कॉस्ट्यूम शामिल है। श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुनते हैं फिल्म कलंक से ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। अगली जो फिल्म है वो है हमारी द क्वीन ऑफ झांसी, जी हाँ मणिकर्णिका। झांसी के राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का शाही महल और दरबार इस फिल्म में देखने को मिला है। इस फिल्म में सोने से सजे दरबार, बड़े बड़े सिंहासन, राजा महाराजाओं के वैभव को बहुत ही महंगे तरीके से पर्दे पर उतारा गया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

तो श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत में आप सुन रहे हैं हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए ये गीत, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो महाराजा राजाओं की सेटअप पर, जो उन पर बनी, उन पर फिल्माई गई फिल्मों के ऊपर था, उनकी पोशाकों के ऊपर था। तो अगला जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो फिल्म

शमशेरा का है। 1800 के दशक का काल्पनिक एक सेटअप रेडी किया गया था जिसमें ब्रिटिश काल के दौरान बने विशाल किले और क्रूर शासकों के भारी भरकम ठिकाने दिखाए गए हैं। फिल्म का सेट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा महल नुमा किला खड़ा किया गया था जो दिखने में बेहद महंगा और विशाल था। आइए सुनते हैं नीति मोहन और शादाब फरीदी की आवाज़ में फिल्म शमशेरा का

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, और हम अब उस पड़ाव पर आ चुके हैं जब इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपको सुनवाया जाए, और वो फिल्म है बाहुबली। जी हाँ, एक काल्पनिक ऐतिहासिक फिक्शनल एपिक कहानी है जो प्राचीन भारत के महिष्मति साम्राज्य पर आधारित है। हालांकि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका सेटअप भारतीय सिनेमा में सबसे भव्य माना जाता है। विशालकाय प्रतिमाएं, भव्य राज्याभिषेक समारोह और युद्ध के मैदानों ने इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का रूप दे दिया है। तो श्रोताओं, आप और हम मिलकर इस गीत को सुनेंगे, और इस गीत के साथ ही प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत भी बस यहीं तक। फिर मिलेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना है आकाशवाणी उदयपुर को। और इस प्रोग्राम से फिलहाल के लिए आपकी दोस्त परवीन को दीजिए इजाज़त।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम गोखड़ा का, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोकगीत। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम आते हैं बस कुछ ही पलों में।

राम राम सा खम्मा गणी सा महाराणा प्रताप री जयंती आप सबने गणी गणी शुभकामना सा। तो देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा रो टेम वे गयो है और माँ कार्यक्रम गोखड़ा लेन आई गया हाँ सा। आज गोखड़ा कार्यक्रम में आप रे लारे मुँह परवीन बाई सा गणी गणी खम्मा सा।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़ी है, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
6: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
5: अरे वही अपना 60 रुपया।
6: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
5: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
6: और दूसरा?
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर, UPI से।
6: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का घोखड़ा कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 11:31 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम है सुगम संगीत। पहली प्रस्तुति डॉक्टर प्रेम भंडारी की गाई हुई हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर प्रेम भंडारी की गाई कुछ गजलें। आइए सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी उदयपुर से हमारे श्रोता सुन रहे हैं सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर प्रेम भंडारी की गाई गजलें। आइए सुने ये अगली गजल।

तो श्रोताओं, इस गज़ल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। मध्याह्न के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं दोपहर फिल्म संगीत। पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आइए शुरुआत करते हैं आज के फिल्म संगीत की अजनबी फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

ये आवाज़ थी सुरेश वाडकर की। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। आकाशवाणी उदयपुर से हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ये अगली प्रस्तुति प्रेम रोग फिल्म से है, जिसमें आवाज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा, पराया धन फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिले।
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम था ये गुलिस्तां हमारा। आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गाना। फिल्म है विश्वनाथ।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये भाग यहीं समाप्त होता है। दिन में 1:45 पर एक बार फिर से आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल, गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने

0: पर मजबूर होना पड़ा था। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए मकानों, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले के जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहाँ का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नेदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलो अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। दिन के 1:05 हो चुके हैं। हमारी महिला बहनें अब सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: रेडियो की तरंगों संग जुड़ते हैं दिलों के तार, रेडियो की तरंगों संग जुड़ते हैं दिलों के तार, मित्रों का साथ बनाता है हर दिन त्योहार। दूर होकर भी जो पास होने का एहसास दिलाए, ऐसे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वीकार कीजिए महिला जगत कार्यक्रम में आपकी रेडियो सखी रिमी नंदी और
1: रजनी शर्मा,
0: हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: तो सखियों, आज आप बहुत खुश होंगी, हमें पूरी उम्मीद है, और आप हमेशा खुश रहें यही हम प्रार्थना भी करते हैं। और वैसे भी रजनी, इन दिनों तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, कॉलेजों में भी छुट्टियां हैं, तो फिर इस समय तो लोगों का सैर सपाटे का और मस्ती भरा मूड होगा ही।
1: बिल्कुल होगा ही, और रिमी साथ में बच्चों का ही नहीं, हम बड़ों का भी होगा।
0: बिल्कुल, सुबह आराम से उठना या सुबह सैर पर जाना और फिर अपने मन मर्जी से पूरा दिन चलाना, हम काफ़ी मज़े में अपने दिन बिता रहे हैं ऐसा ही लगता है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग अब मतलब ऐसा चाह रहे हो कि जब बस हमारा दिन, हमारा जो जीवन है ऐसा ही चलता रहे।
1: बिल्कुल, और हम भी जब प्रोग्राम में आए हैं रिमी, तो हम भी तो एक उमंग लेकर के आए हैं ना। सखियां हैं, श्रोता हैं, वो सब ये सोच रही है कि अब आगे क्या होने वाला है।
0: बिल्कुल, तो क्यों ना हम इस उमंग को दुगुना करते हैं एक गीत के द्वारा। तो सुनते हैं एक प्यारा गीत।
1: बिल्कुल।

0: और रिमी साथ में बच्चों का ही नहीं, हम बड़ों का भी होगा।
1: बिल्कुल, सुबह आराम से उठना या सुबह सैर पर जाना और फिर अपने मन मर्जी से पूरा दिन चलाना। हम काफी मजे में अपने दिन बिता रहे हैं, ऐसा ही लगता है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग अब मतलब ऐसा चाह रहे हो कि जब बस हमारा दिन, हमारा जो जीवन है, ऐसा ही चलता रहे।
0: बिल्कुल, और हम भी जब प्रोग्राम में आए हैं रिम्मी, तो हम भी तो एक उमंग लेकर के आए हैं ना। सखियां हैं, श्रोता हैं, वो सब ये सोच रही है कि अब आगे क्या होने वाला है।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना हम इस उमंग को दुगना करते हैं एक गीत के द्वारा। तो सुनते हैं एक प्यारा गीत।
0: बिल्कुल।

0: स्पीड लिमिट होती है,
1: बिल्कुल उसी लिमिट स्पीड से वो चलते हैं, तो वो एक रहता है, हम हमारे बच्चों को भी भेजते हैं तो हम शांति से रहते हैं कि हमारे बच्चे सफ़र अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा परिवहन लागत में कमी, ई बसों का संचालन खर्च डीजल बसों की तुलना में कम होता है। जब परिवहन लागत कम होती है तो सरकारी संसाधनों की बचत होती है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलती है।
0: तभी तो रजनी, जैसे राज्य और जो केंद्र सरकारें, हमारी विभिन्न राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार द्वारा ईवी जो व्हीकल हैं या ईवी गाड़ियां जो हैं उनकी खरीदारी में भारी सब्सिडी दी जा रही है और रोड टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़, इस तरह की कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि ई व्हीकल को, भले ही वह ई बाइक हो या ई कार हो या ई बस हो, इनको बढ़ावा मिले।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये पर्यटन में भी हमें लाभ पहुंचाती है रिमी। जैसे स्वच्छ और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन पर्यटकों को आकर्षित करता है, पर्यटन बढ़ने से होटल, रेस्तरां, हस्तशिल्प व स्थानीय व्यापार को लाभ मिलता है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, और तुम बताओ कौन सी है।
0: बिल्कुल, ई बसों की खरीद के लिए, जैसे कि अभी मैंने अभी बताया कि इनकी खरीद के लिए काफ़ी तरह से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट करना और इनकी खरीदारी में भारी सब्सिडी देना, रोड टैक्स देना और जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जब भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी में चार्ज कम हो रहा है तो आप चार्जिंग स्टेशन पर ले जाएं और वहां बहुत ही कम शुल्क में आपका चार्जिंग भी हो जाएगा।
1: तो रिमी, हम बस श्रोताओं को ये कह सकते हैं कि ई बसें केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि हरित व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: बिल्कुल 100% सही बात कही, और इस समय घड़ी कहती है कि हमें एक गीत तो सुनाना ही चाहिए हमारे श्रोताओं के मनोरंजन के लिए।

0: क्या बात है, सचमुच में अगर हमें अपने लोगों का साथ मिलता रहे तो हम क्या से क्या न कर लें, हम
1: ऐसे ही
0: चांद
1: मुस्कुराते
0: सितारों तक
1: रहे।
0: बिल्कुल मुस्कुराते रहें, चांद सितारों को भी हम तोड़ लाएं। तो हम बात करते हैं हमारी बहनों की, हमारी ग्रामीण महिलाओं की, कि ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं का क्या स्थान है और किस तरह से वे और आगे बढ़ सकती हैं, हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण जो महिलाएं हैं रिमी, वो बहुत सारी ऐसी हैं कि पढ़ लेती हैं, लिख लेती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो वो एक तरह से बंध जाती हैं, और वो कुछ करना भी चाहती हैं तो हो सकता है कि घर के लोग साथ ना दें। तो जब घर के लोग साथ देंगे, जैसा कि हमने अभी गाने में सुना, गीत में सुना, तो कितना अच्छा है कि वो जो लेडी है वो कितना आगे बढ़ जाएगी, वो जो महिला है वो क्या कुछ ना कर जाएगी।
0: बिल्कुल, तो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं इन दिनों अगर देखें तो वह अपने साहस, कौशल और मेहनत से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। और दोस्तों, आज ग्रामीण भारतीय महिलाएं केवल घर और परिवार तक ही सीमित नहीं हैं। अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आप जैसे ही गांव में जाते हैं तो आपको अपने आप ही एहसास होने लगेगा कि आज वे महिलाएं उतनी पीछे नहीं हैं जो पहले थी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: पहले वह अपने आप को घर तक ही सीमित रखती थी, खेत खलिहान के कार्य तक ही सीमित रखती थी।

0: थी, और थोड़ा घर का काम किया, थोड़ा अपने गुरुजनों की सेवा की और खेत में जाकर काम किया। मगर अब काफ़ी उनके पास इस तरह से क्षेत्र उनको मिल गए हैं, उनको काफ़ी अब मौका मिल चुका है, उनको बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से भी काफ़ी ऋण दिया जाता है, जिससे कि
1: बिल्कुल
0: वह अपने उनका जो हुनर है उसको काफ़ी आगे बढ़ा रही हैं। भले वह अचार पापड़ की बात हो, या सिलाई कढ़ाई की बात हो, या कोई और हस्तशिल्प कला हो।
1: बिल्कुल। और रिमी, सबसे पहले हम सखियों को बताते हैं कि उद्यमिता का अर्थ क्या है। किसी विचार को व्यवसाय का रूप देकर रोजगार और आय के अवसर उत्पन्न करना। जब ग्रामीण महिलाएं अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करके कोई व्यवसाय शुरू करती है, तो उसे ग्रामीण महिला उद्यमिता कहा जाता है। समय के साथ महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। आपने जैसा बताया कि आज की महिलाएं डेयरी, सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, या फिर कहें हम मधुमक्खी पालन में भी वो बहुत आगे हैं। मशरूम उत्पादन ले लो, आप ऑनलाइन बिक्री ले लो, या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो सफल उद्यमी बन रही है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और इसके लिए उन्हें सरकार भी तरह तरह की सुविधाएं दे
1: दे
0: रही
1: रही
0: है,
1: है
0: ताकि जब वह अपना व्यवसाय शुरू करती हैं तो उनको शुरुआती समय में कुछ एक अमाउंट की, कुछ उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में वह बहुत आसानी से छोटे किस्तों में लोन भी ले सकती हैं। और गांव से पलायन की जो समस्या पहले देखी जाती थी, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। पहले
1: बिल्कुल
0: काम के तलाश में पूरा का पूरा परिवार वहाँ से
1: पलायन
0: निकलकर
1: कर
0: शहर,
1: जाता
0: हाँ
1: था।
0: बिल्कुल, दूसरे शहर या दूसरे राज्य में चला जाता था। तो इन चीज़ों पर भी काफ़ी अब लगाम लगी है, क्योंकि उनको गांव में ही इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं। साथ ही साथ डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन बाज़ारों ने भी उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुँचाने में उनका काफ़ी उनकी काफ़ी मदद की
1: मदद
0: है,
1: करिए
0: क्योंकि अब
1: बिल्कुल।
0: महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो उनके परिवार के लोग भी उनकी मदद करते हैं। तो जैसे उन्होंने कोई हस्तशिल्प, कोई उत्पाद बनाया है, तो उसको किस तरह से डिजिटलाइज करना, या पूरी दुनिया तक पहुंचाना, या ऑनलाइन बिजनेस करना, यह सब में भी उनको काफ़ी आजकल मदद मिल रही है। और वैसे भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें काफ़ी समझदार हैं, बस शुरुआत में थोड़ा उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। और
1: बिल्कुल
0: कई ऐसे एनजीओ भी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो उन्हें इस मामले में काफ़ी मदद करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: रिमी इतनी अच्छी बात बोली है तुमने। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, महिला ई हार्ट, कौशल विकास कार्यक्रम। इन योजनाओं से महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण व विपणन सहायता प्राप्त होती है।
0: बहुत अच्छी बात बताई। सचमुच में इतनी लंबी लिस्ट है इन छोटे छोटे जो स्कीम्स हैं, अगर हम इन सब का फ़ायदा लेने लगें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए।
1: बिल्कुल
0: तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोतागण हैं, वह भी जब इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो अपने आस पड़ोस की महिलाओं को ज़रूर बताएं, और जिससे कि इन स्कीम्स का, ये जो योजनाएं हैं, इनका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले
1: और
0: सकें।
1: इनमें केवल ये ग्रामीण महिलाएं नहीं, शहरी महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं।
0: बिल्कुल उठा सकती हैं
1: उन्हें जो
0: ग्रामीण,
1: भी हुनर आता है वो उसे आगे बढ़ाएं।
0: बिल्कुल ग्रामीण हम अक्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल जो हमारे गांव हैं, शहर से थोड़ी दूर होते हैं, आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार बहुत कुछ आते हुए भी उसका लाभ हम ले नहीं
1: नहीं ले
0: पाते
1: पाते।
0: हैं। तो ऐसी योजनाएं हमारी सभी महिलाओं के लिए हैं, तो इसका लाभ जरूर
1: घर
0: उठाएं।
1: बैठे उठाए।
0: बिल्कुल। और मैं समझ रही हूँ तुम अब क्या सोच रही हो, कि हम बातें ही करते रहेंगे या
1: बिल्कुल
0: कुछ मनोरंजन भी
1: हाँ
0: करवाएंगे। तो
1: रिमी
0: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ, सुनते हैं एक गीत।

0: बिल्कुल, हम डूब गए हैं भक्ति में, और सचमुच में सबके जीवन में ही एक मार्गदर्शक की बहुत ज़रूरत होती है, हमें
1: बिल्कुल
0: गुरु की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करते हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी की, जो सिख धर्म के पांचवे गुरु थे, और वे महान आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक और अद्वितीय त्यागी व्यक्ति थे। उन्होंने मानवता, शांति और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और रजनी, क्या तुम्हें मालूम है कि इसी कारण उन्हें शहीदों के सरताज के नाम से भी जाना जाता है?
1: बिल्कुल, जैसा कि रिमी तुमने कहा कि रजनी तुम्हें मालूम है, तो मैं कह दूं कि मुझे नहीं मालूम था और आपसे जानकर मुझे अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं जिनको भी हम ऐसे ही जानकारी देते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 में गेदईवाल पंजाब में हुआ था। वे चौथे सिख गुरु गुरु रामदास के सुपुत्र थे। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता, विनम्रता व सेवा की भावना थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। और उन्होंने गुरु अमरदास जी से, इसके अलावा बाबा बुड्ढा जी से, इनकी देखरेख में, इनके मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जन किया, और उनकी देखरेख में ही उनकी शिक्षा भी हुई। वे बचपन से ही अत्यंत शांत स्वभाव के व्यक्ति रहे, गंभीर और भक्ति भाव वाले थे, और मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 1581 में आपको पांचवें गुरु की गद्दी सौंपी गई। और उन्होंने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, जिसे कौन
1: बिल्कुल
0: नहीं जानता, गोल्डन
1: हाँ
0: टेम्पल के नाम से हम सभी जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसकी नींव भी, उस मंदिर की नींव भी इन्होंने ही रखी, और जिसमें कि चारों तरफ चार दरवाजे हैं,
1: जी
0: जो यही दर्शाता है कि मंदिर जो है, अपना गोल्डन टेम्पल है, यह सभी धर्मों के लिए, सभी
1: सभी
0: तरह के
1: जाति के
0: व्यक्तियों
1: लिए।
0: के लिए उसके द्वार हमेशा खुले हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: और आदि ग्रंथ का भी संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था।
1: बिल्कुल, और मानवता व सेवा का संदेश भी उन्होंने जो लोगों को सिखाया कि ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान है, परिश्रम करो, सत्य का पालन करो और जरूरतमंदों की सहायता करो।
0: बहुत अच्छी बात कही। तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यही उम्मीद रखते हैं कि हम सभी इनके पद चरणों में चलने की पूरी कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल
0: और इस समय हम सुनाते हैं एक प्यारा गीत।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

0: क्या बात है रजनी, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, सभी को हमारा संदेश तो मिल ही गया होगा। हम गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, हमने एक बहुत सुंदर सा घर बनाया है ना?
0: बिल्कुल, हमारा घर काफ़ी सुंदर है, सपनों का घर। तो समय के साथ जैसे हमको अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए, वैसे ही अपने घर में भी कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहना चाहिए। इससे क्या, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, ताजगी बनी रहती है और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, जैसे हम खुद का मेकओवर करते हैं, वैसे घर का भी मेकओवर करते रहना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा हमें तकनीक का प्रभाव लाना चाहिए, क्योंकि आज का दौर यही है। तकनीक ने इंटीरियर को नई दिशा दी है। आज घरों में देखने को मिलता है स्मार्ट लाइटिंग, सेंसर आधारित उपकरण, ऑटोमेटिक पर्दे, स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली, वॉइस कंट्रोल डिवाइस। अब
0: क्या
1: घर
0: बात
1: केवल
0: है,
1: रहने की जगह नहीं, बल्कि स्मार्ट जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
0: क्या बात है। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी में फिर स्मार्ट घर भी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आप तकनीक से तो अपने घर को जोड़े ही, साथ ही साथ बीच बीच में आप रंग भी बदल सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और घर के रंग, दीवारों के जो रंग होते हैं उसके हिसाब से आप पर्दे भी बदल सकते हैं, और आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे लगा सकते हैं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। फिर आप सोफ़े के जो कवर होते हैं उनको बदल सकते हैं। इस तरह से आप अपने किचन में भी काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, क्रॉकरी चेंज कर सकते हैं।
1: हाँ
0: बट इस
1: रिमी,
0: समय अब घड़ी कहती है,
1: बिल्कुल कहती है, लेकिन थोड़ा सा ये कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका सबसे सुंदर इंटीरियर प्रेम, अपनापन और सकारात्मकता ही होती है।
0: बिल्कुल। और इसी वादे के साथ कि आगे भी आपसे बहुत सारी बातें करते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

महिला जगत, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। श्रोताओं, आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर की मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हो चुके हैं। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलें गीत संगीत के सफर पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत के जरिए।

ये आवाज़ें थी हर्षदीप और अरिजीत सिंह की। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। आइए, रब ने बना दी जोड़ी, इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, रूप कुमार राठौड़ ने इसे गाया है।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दम लगा के हईशा इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना श्रोताओं, मोनाली ठाकुर और पेपों की आवाज़ें थीं। अतरंगी रे यह है फिल्म का नाम, जिसका गीत अब आप सुनेंगे अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति का गाया हुआ।

राहत फ़तेह अली खान ने इस गीत को गाया था। फिल्म का नाम था लव आजकल। और इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, दिन के 2:10 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इन नक्सल एरिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत का दृष्टिकोण गृह मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक बहुआयामित सुरक्षा रणनीति द्वारा संचालित है। इस रणनीति का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकत्रित करना है। प्रमुख आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और अवसंरचना संबंधी पहलों में कुछ खास बातें हैं जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। सुरक्षा संबंधी व्यय। केंद्र सरकार राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को वामपंथी उग्रवाद अभियानों से संबंधित व्यय के लिए प्रतिपूर्ति करती है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग और कर्मियों के लिए बीमा कवरेज शामिल है। किलेबंद पुलिस स्टेशन। विशेष अवसंरचना योजना के तहत सरकार ने दूरस्थ नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों में कई किलेबंद पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए धन दिया है, ताकि सुरक्षित परिचालन केंद्र प्रदान किए जा सकें। सामरिक और गतिशीलता उन्नयन। राज्य पुलिस इकाइयों और विशेष बलों को आधुनिक हथियारों, उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और बढ़ी हुई गतिशीलता से लैस किया जा रहा है। साथ ही नए पुलिस आवास और बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया जा रहा है। खुफिया और विशेष बल। वित्त पोषण में राज्य खुफिया शाखाओं और विशेष राज्य लड़ाकू विंग जैसे कि ग्रेहाउंड या विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि लक्षित माओवादी विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया जा सके। नागरिक कार्यवाही।

और सामुदायिक संपर्क, नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम का उपयोग स्थानीय आदिवासी आबादी और पुलिस के बीच की खाई को पाटने के लिए किया जाता है, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविरों, युवा गतिविधियों और कल्याणकारी पहलों को वित्त पोषित किया जाता है, ताकि सुरक्षा बलों का एक सकारात्मक नागरिक चेहरा प्रस्तुत किया जा सके। तकनीकी सहायता। केंद्रीय एजेंसियां LWE जिलों में तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिसमें परिवहन निकासी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करना और त्वरित प्रतिक्रिया और रसद सहायता के लिए घने जंगल शिविरों में हेलीपैड का निर्माण करना शामिल है।

ये थी जानकारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इन नक्सल एरिया विषय पर। इसी के साथ आज की विकास चर्चा यहीं पूर्ण होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हमारे श्रोता सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों

0: सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने

0: उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाईयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाईयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए

0: अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1,125 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नीता भाई सा, राम राम
1: राम राम रामा भाई, राम राम
0: कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा
0: देखो कार्यक्रम रो टाइम भी है और देखो भात भात री जानकारी लाया हाँ। और किसान भाई देखो आज आप ही बात करांगा कि जो खेतरी जो मेड़बंदी है वनडो कई महत्व है सा।
1: देखो सा, खेतरी मेड़बंदी भारतीय कृषि रो एक पारंपरिक और वैज्ञानिक आधार भी है रामा भाई। साधारण शब्द में अगर केमा तो मेड़बंदी रो अर्थ है खेत रे चारी तरफ मिट्टी पत्थर और प्राकृतिक जी वनस्पतियां वणारी एक ऊंची दीवार या सीमा बनाई देनो ऐसा।
0: बिल्कुल सा, और सीमा बनाना भी जरूरी है क्योंकि देखो जे भी ढांडा चोपा है जे भी पशु पक्षी है वे आई जावे तो देखो फसल ने नुकसान पहुंचावे। तो देखा कि आधुनिक कृषि में बढ़ती थे कि लागत और घटता तक का संसाधन के बीच में देखा कि मेड़बंदी रो महत्व है वो बढ़ गयो है। मेड़बंदी देखा कि सबसे बड़ो लाभ है कि जल संरक्षण और नमी रो रख रखाव है सा।
1: मेड़बंदी देखो, बारिश रे पानी ने खेत बांधने बेवम रोके, पानी खेत में ज रुकने जमीन रे महीने रिसे जण्यू कहिए भूजल स्तर में सुधार वैसा।
0: बिल्कुल सा, और अनिता भाई साहब भी देखा कि जिंदा पानी खेत में रुके तो मिट्टी लंबे समय तक नमी सोखने रखे और या नमी आप ही देखा कि फसलारी जड़ा में सूखा हुआते दिना में भी पोषण देती रहे, जणू आप ही देखा कि सिंचाई आवश्यकता है वह भी कम भी जावे सा।
1: मेड़बंदी देखो, मिट्टी रे कटाव पे भी रोक लागे, तेज वर्षा आईरी वे बचे बाढ़ आईरी वे बनी टेम पे खेतरी सब ऊपरी जा उपजाऊ मिट्टी है वह पानी रे लारे बह जावे। मेड़बंदी एक मजबूत बांधरी तरह काम करे जो कि अणी कीमती मिट्टी ने खेत उबाड़ने जावाऊ रोके सा।
0: बिल्कुल किसान भाई, और आप देखा कि सूखा क्षेत्र में जटे तेज हवा चल रही है बटे देखो कि मेड़ा हवारे वेग ने कम करे, जणू आप देखा कि धूल रे रूप में उड़वा वाली जो उपजाऊ मिट्टी है मंडो नुकसान रुके। लारा भी देखा कि मेड़बंदी पोषक तत्व और खादारो संरक्षण भी बेहतर रहे सा।
1: किसान भैया, अपने खेत में जो गोबर री खाद कंपोस्ट या बचे रासायनिक उर्वरक यूरिया विया डीएपी वे ये सब ना के जो कि भाई पानी रे लारे बही ने भड़े वाला खेत या बचे नाला में परा जावे, मेड़बंदी यो सुनिश्चित करे कि जो पोषण आपा खेत में नाक्यो है वो अपने खेत में फसला ने मिले सा।
0: बिल्कुल सा, और मेड़बंदी खेत की जो सीमाओं देखोगी

0: स्पष्ट निर्धारण हुए। और आप ही देख सका कि गांव में अक्सर जमीनी सीमाओं लेने किसान भाई जो है आपसी विवाद या झगड़ो हुए, तो एक स्थायी और मजबूत मेड़ वे क्षेत्रीय सीमा स्पष्ट रहे, जनों आप ही देखा कि जमीन संबंधी विवादारी संभावना भी खत्म हुई जावे ऐसा।
1: देखो साहब, मेड़बंदी रो और कई महत्व है, रामा भाई अंडे बारा में आगे बात करांगा, लेकिन देखो आज प्रताप जयंती भी है,
0: बिल्कुल
1: तो आपा किसान भाई ने प्रताप जयंती री शुभकामना देवा और यो महाराणा प्रताप रो बढ़िया सो राजस्थानी गीत होने देवा सा।
0: बिल्कुल होना सा।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
7: तो रामा भाई देखो, बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनाया और लारे संदेश सुनाया, और अटा पहले जानकारी कर रही रहा कि भाई मेड़बंदी रो महत्व कई है सा।
8: बिल्कुल सा, और आप ही देखा कि मेड़बंदी जो है वह फसला हूँ सुरक्षा का भी है अपने। मेड़ ऊपर आप ही देखा कि कटीली जाड़िया है, बांस है या करौंदा जैसा पौधा है, प्राकृतिक बाढ़ रो काम करे। और मैं आप ही देखा कि जो नीलगाय है, अन्य जंगली जानवर है, आसानी खेत में नहीं घुसे और देखो फसल बर्बाद भी नहीं कर पावे। लारे आप ही देखा कि जो अवांछित इंसान है या वाहन प्रवेश में भी रोक लागे, जनु फसल कुचलवा में भी बचत व्यवस्था।
7: बढ़िया बात बताई सा। और देखो, मेड़ी खाली पड़ी जा जमीन है, वंडो उपयोग भी किसान भाई अतिरिक्त कमाई रे वास्ते कर सके। मेड़ पे देखो शीशम, सागौन, बबूल या पचे बांस जैसा कीमती पेड़ लगाई सका। अणियो कही वे अंडे अलावा देखो सहजन, करौंदा, पपीता, नींबू या पचे औषधीय पौधा जैसा जिस तरह की एलोवेरा है, इस सब लगे ने किसान भाई खास फसल तो ले ही रहा है। वंडे अलावा मेड़ी फसलों जो है साल भर में अतिरिक्त मुनाफो भी कमाई सके सा।
8: बिल्कुल किसान भाई, और देखो मेड़ पे उगा वाली घास है, जाड़िया है, फसल ने नुकसान पहुँचा वाला हानिकारक कीट है या खा वाला मित्र कीट जैसा लेडी बर्ड है, विटल है, मकड़िया है, पक्षी है, देखो प्राकृतिक घर भी बनावे। जनान खेत की मेड़ पर पक्षी बैठे तो फसला में लागवा वाले जो सुंडिया है, कीड़ा है, वे खाई जावे, जनु देखो जैविक नियंत्रण भी हुए और रासायनिक कीटनाशक और खर्च भी बचे है सा।
7: मेड़ मंदी उन देखो कृषि कार्य में सुगमता भी आवे, मजबूत और चौड़ी मेड़ खेत में चारी तरफ घूमवा में, फसलारी निगरानी करवा में और कृषि उपकरण जिस तरह की स्पेयर ले जावा रे वास्ते हाउ जो है रस्ता रो काम करे है। अगर खेत में अलग अलग फसल बोई तकी है तो मेड़ मंदी रे जरिए देखो जरूरत वे वणे अनुसार एक हिस्सा में पानी दे सका और दूसरा हिस्सा में सूखो रख सका सा।
8: बिल्कुल किसान भाई, और देखो मेड़ मंदी रो पूरा लाभ उठा हुआ थे, अंडी ऊंचाई 5 फुट 2 फीट और चौड़ाई आसानी चल सके, जत्री चाहे वत्रिया भी कर सका। और खेत ढलान पे हुए तो मेड़ हमेशा ढलान रे विपरीत दिशा में बनाने ताकि बेहतर तो को पानी गति ने रोक सके ऐसा।
7: तो देखो मेड़बंदी रात्रा लाभ है किसान भाई, देखो बरखा आए बटा पहली खेतरी मेड़बंदी कर लीजो ताकि अतरा सारा लाभ जो है आप उठा ही सको। और देखो लाभ री बात कर रहे तो कार्यक्रम में भी लाभ करा भाई, जानकारी तो कर ही रहा लेकिन गीत संगीत आड़ी चलना और राजस्थानी गीत होना।
8: बिल्कुल होना।

0: रंगीलो राजस्थान, देखो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत होनी, और देखो लाल आरे लोकगीत भी होने रहा, और लाल आर देखो बातचीत भी कर रहे हैं। और देखो कि वर्तमान समय की जो महती आवश्यकता है वो है जल संरक्षण और मिट्टी रो बचाओ। और क्यों भी है, देखो जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है। मानव में आप ही देखा कि जो सभ्यता है या इतिहास रो गवाह देवे कि जहाँ संस्कृति ने अपनी मिट्टी हो और पानी रो सम्मान नहीं की दो, वे सदियों फली फूली है और आगे भी बढ़ी है। शाम
1: वर्तमान टाइम री बात करना तो देखो बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुन औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन रे कारण अपनी धरती रे दो मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन जल और मिट्टी गंभीर संकट में है ऐसा।
0: बिल्कुल। और देखा कि जल और मिट्टी रो आपस में गहरो संबंध है। यदि मिट्टी स्वस्थ वेगा तो पानी ने रोकने रख पाएगा, और यदि पानी उपलब्ध वेगा तो मिट्टी की उर्वरता और उनमें मौजूद सूक्ष्म तत्व भी जीवित रहेगा। सा
1: जल संरक्षण समय री सबू बड़ी मांग है। पृथ्वी रो लगभग 71% भाग जल उठक्यो तो कोई, लेकिन अणिमो केवल 2.5% जल ही मीठो है जिन्हें आपा पीवा या पचे खेती रे वास्ते उपयोग में करा सा।
0: बिल्कुल। और मैं देखा कि सीमित मीठा पानी रो एक बड़ो हिस्सों ग्लेशियर और बर्फ रूप में जमे हुए मानव उपयोग वाते मात्र 1.7% या भी कह सका कि जो कम जल है वो भी उपलब्ध है। ऐसा
1: जल संकट रे खास कारण री बात करा तो देखो भूजल रो अत्यधिक दोहन, परंपरागत स्रोत जो कि पुराना कुआ बावड़िया है, तालाब है, वना रो रख रखाव नहीं वेणो है, औद्योगिकरण और घरेलू प्रदूषण भी देखो नदियाँ और तालाबों में जई रहा है, अणियों जो है वर्षा जल भी बेई जावे, जल संकट रहा ये सब कारण है सर।
0: बिल्कुल सर। आपने देखा कि वर्तमान समय में जल प्रदूषण भी वही रोए कतरी, देखा कि जो जिला है वहाँ भी साफ सफाई नहीं रखे, जिला में आप ही देखा कि कचरो डाल दे तो अंडे कारण भी देखो कि जल प्रदूषित वे। और जल संरक्षण जो प्रभावी उपाय है वहाँ ने आपने अपनाना वेगा। सबसे पहले आप ही बात कर सकेंगे कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जड़ में आप ही देखा कि छत है, खुला में आप ही देखा कि जो मैदान है वन में बारिश रो पानी इकट्ठो करने जमीन अंदर भेजवारो काम व्यवस्था।
1: खेती बाड़ी में आधुनिक सिंचाई प्रणालियां अपनाई ने भी देखो जल री बचत कर सका, जिससे कि टपक सिंचाई है, फवारा सिंचाई है, अणारो उपयोग कर सका, पारंपरिक जो जल स्रोत है वनारो पुनरुद्धार भी कर सका, जिससे कि आप बताए हो तो वनारो अगर साफ सफाई रखांगा तो जल स्तर वन में बढ़ेगा सा।
0: बिल्कुल। और देखो कि घरेलू स्तर पर भी बचत कर सका, जिस तरह रिसाइकिल और रीयूज री आदत डालनो, जिस तरह आपने देखा कि रसोई में आप जो भी सब्जी धोई रहा तो देखो बच्चों तो को पानी पौधा में डालनो, ब्रश या दाढ़ी बनाता समय नल खुलो नहीं छोड़नो, कई बार आपने देखा कि शावर की जगह बाल्टी भरने नहानो, पाइप से गाड़ी नहीं धोनो है, गीला कपड़ों साफ करना है, तो ये छोटी छोटी जरूरत है। आप जो जरूरत है पानी री वंडो कर सही और सुरक्षित उपयोग करांगा तो देखो आप ही पानी नहीं बचेगा। कई बार आप देखा घरे जो नल लग गया था वनों पानी री से तो वनों भी देखो कि पानी व्यर्थ बहवे, तो देखा कि जो टपकता नल या पाइप री जो नियमित समय पर आप मरम्मत कर सका।
1: मिट्टी संरक्षण की बात करना तो मिट्टी देखो केवल धूल या मिट्टी नहीं है, बल्कि देखो वह एक जो है बहुत बढ़िया पारंपरिक जो है पारिस्थितिक तंत्र ने बचावारो साधन है। और मिट्टी संरक्षण रे वास्ते जो उपाय री बात करना तो देखो ढलान, खेत और मेड़ और खाली जो जमीन है वन्ने वत्ती पेड़ लगावांगा तो मिट्टी संरक्षण वे सकेगा सा।
0: बिल्कुल सर। आप देखा कि जैविक खेती में आप देखा कि रासायनिक खादारी जगह गोबरी खाद है, कंपोस्ट खाद है, केंचुआरी खाद है और खरी खाद रो उपयोग करांगा तो निश्चित रूप में भी बच सकांगा सा।
1: पहाड़ी क्षेत्र में देखो सीढ़ीदार जो खेती है वो करना चाहे, फसल रे अवशेषों ने मिट्टियों ने ढांक दांगा तो देखो नमी बनी तक ही रहेगा और जो है जल रो संरक्षण भी वेगा और मिट्टी रो कटाव भी जो है वो रुकेगा
0: बिल्कुल
1: सा।
0: सर। आपने देखा कि जल और मिट्टी एक ही सिक्का रा दो पहलू है, जड़ में आपने देखा कि मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ावे तो मिट्टी की पानी सोखाई क्षमता गुणा बढ़ जावे, जड़ में आपने देखा कि सूखी और बेजान मिट्टी पानी ने रोक नहीं पावे, जणू बाढ़ और सूखा जैसी स्थितियां वण है सा।
1: तो देखो नागरिक रो खाली सरकार देखो जल संरक्षण रा उपाय करे यो जरूरी नहीं है, अपना सब रो दायित्व है कि जल और मिट्टी ने आपा बचावा
0: बिल्कुल
1: सा।
0: सा। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और होना राजस्थानी लोकगीत।

0: तो देखो यो राजस्थानी लोकगीत होने और देखो कार्यक्रम अटे विदा ना, तो देखो आ गया दो चाला सा राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा। हमारे श्रोताओं ने अभी सुना कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा।

0: है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22 ओवर में 2 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये दोपहर कालीन सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 सायंकालीन सभा के प्रसारण लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। आइए सभा की शुरुआत करते हैं युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी से।

0: वैसे ही कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश हम बहुत ही कम करते हैं। हम घड़ी देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि समय को नापने का सफ़र कितना लंबा रहा होगा। हम किसी पुराने महल या स्मारक की तस्वीर देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सदियों पहले उसे बनाने वाले ने क्या-क्या कल्पना की होगी। और हम किसी सफल इंसान का नाम तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष का सफर कम पहुंच पाते हैं।
1: बिल्कुल चिन्मय, और शायद यही वजह होती है कि जब किसी चीज़ की कहानी पता चलती है तो वही साधारण सी लगने वाली चीज़ अचानक बहुत खास लगने लगती है। एक घड़ी सिर्फ समय बताने वाली मशीन नहीं रह जाती, एक स्मारक सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रह जाता, और एक नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रह जाता। उसके साथ जुड़ जाती है मेहनत, संघर्ष, कल्पना और उपलब्धियों की पूरी कहानी।
0: और आज का युववाणी भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो समय को सिर्फ दिखाती नहीं है बल्कि खूबसूरती से प्रस्तुत भी करती है। हम चलेंगे इतिहास की गलियों में, जहां मांडू के स्मारक आज भी अपने दौर की कहानियां सुनाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसका नाम शायद बहुत ही कम लोग रोज़ में सुनते हैं, लेकिन उसकी स्किल पूरी दुनिया बारीक कलाओं में गिनी जाती है।
1: और साथ ही बात होगी एक ऐसे विषय की जो पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विकास सिर्फ नई इमारतें बनाने से नहीं होता, धरती को बचाकर रखने से भी होता है। और इसी सोच के साथ हम जुड़ेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट से, जो हमें प्रकृति और संसाधनों की अहमियत याद दिलाता है।
0: इसके अलावा मिलेंगे कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने विचार, अपनी कला और अपने काम से समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कुछ नाम संगीत की दुनिया से होंगे तो कुछ साहित्य और संस्कृति से, कुछ खेल की दुनिया से, और इनमें सब में एक ही कॉमन बात है, जो कि है अपने क्षेत्र में कुछ अलग करने का साहस करना।
1: मतलब चिन्मय, अगले कुछ मिनटों में कहीं इनोवेशन मिलेगा, कहीं हिस्ट्री मिलेगी, कहीं इंस्पिरेशन, कहीं अवेयरनेस, और कहीं ऐसी कहानियां जो ये याद दिलाएंगी कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, दुनिया को ध्यान से देखने से भी होता है।
0: और शायद यही युववाणी की सबसे खूबसूरत बात भी है। यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं होती, जानकारी के पीछे की कहानी भी होती है। यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं होते, उनसे जुड़ा नजरिया भी होता है। और यहाँ सिर्फ सुनाना नहीं होता, सोचना भी होता है।
1: तो आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने दिन की भाग दौड़ से कुछ पल निकाल लीजिए और चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां समय भी है, इतिहास भी, प्रेरणा भी और भविष्य की चिंता भी।
0: जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे वैद्य ही,
1: और आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां यूथ की सोच है, आइडियाज हैं और एनर्जी नॉन स्टॉप है।
0: तो चलिए शुरू करते हैं।

0: वैसे ही भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा जाता बल्कि उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है, और राजस्थान की धरती पर एक ऐसा ही नाम है जो कि है महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हम उस वीर योद्धा को नमन करते हैं जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की मिसाल माना जाता है।
1: मेवाड़ की धरती का वह अभिमान था, हर भारतवासी के दिल की शान था। झुका नहीं जो मुगलों के सामने कभी महाराणा प्रताप, ऐसा वीर महान था। बिल्कुल चिन्मय, तुमने सही कहा। महाराणा प्रताप का जन्म ऐतिहासिक रूप से 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन मेवाड़ की परंपरा और हिंदू पंचांग के अनुसार उनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 17 जून को पड़ रही है। और यही कारण है कि आज पूरे मेवाड़ सहित देश के कई हिस्सों में उन्हें श्रद्धा और गर्व के साथ याद किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे स्वाभिमान के भी प्रतीक थे। एक ऐसा समय था जब भारत के अनेक राजघराने मुगल साम्राज्य से समझौता कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि रखा।
1: और शायद यही वजह है कि उनका नाम लेते ही सबसे पहले याद आता है हल्दीघाटी का युद्ध। ईयर 1576 में लड़ा गया यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक गिना जाता है। हालांकि युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि महाराणा प्रताप ने अद्भुत साहस और नेतृत्व से जो है उनका शक्ति दिखाई थी और नेतृत्व का परिचय भी दिया था।
0: और जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो उनके प्रिय अश्व चेतक का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और साहस का एक प्रतीक बन गया। आज भी चेतक की कहानी राजस्थान की लोक कथाओं में और गीतों में सुनाई देती है।
1: जिनमें एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो ये है कि महाराणा प्रताप ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। ऐसे समय भी आए जब उन्हें अरावली के जंगलों में रहना पड़ा, संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया।
0: और यही कारण है कि आज उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान की मिसाल भी माना जाता है। इतिहास

0: बताता है कि बाद के वर्षों में उन्होंने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः अपने नियंत्रण में स्थापित किया और अपने राज्य को फिर से मजबूत बनाया।
1: ईयर 1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। इसके साथ ही वे मेवाड़ के 13वें राणा बने।
0: महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा। यह लगभग 25 वर्षों का एक ऐसा काल था जो संघर्ष, साहस और मातृभूमि की रक्षा को समर्पित रहा।
1: उनके प्रमुख सेनापतियों और सहयोगियों में वीर पठान सेनानायक हकीम खान सूरी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में

0: जीवन आज भी प्रेरणा देता है, क्योंकि कुछ लोग अपने समय में शासन करते हैं और कुछ लोग सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं।
1: और मेवाड़ की धरती के लिए तो महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास नहीं, एक भावना है, एक नाम है, जिसे सुनकर साहस, त्याग, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की याद आती है।
0: महाराणा प्रताप जयंती के इस अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदेशों को नमन करते हैं।
1: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को शत शत नमन। मेवाड़ का गौरव, भारत का अभिमान, महाराणा प्रताप।
2: ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना,

0: धरती की प्यास बढ़ रही है, हरियाली सिमट रही है और उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। यदि समय रहते हमने प्रकृति की पुकार नहीं सुनी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और भोजन दोनों ही संकट बन सकते हैं।
1: आज 17 जून को पूरी दुनिया विश्व मरुस्थलीकरण

0: और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मना रही है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर इन्वायरमेंटल चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में इस दिवस की शुरुआत की थी और तब से हर वर्ष 17 जून को इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
1: मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान को फैलना नहीं है, बल्कि उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे अपनी उत्पादक क्षमता को खो देना भी है। जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है तो भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग होता है, तब भूमि बंजर होने लगती है। इसका सीधा असर कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखता है।
0: आज दुनिया के कई हिस्से जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और घटते जल स्रोत इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों के सामने जल और खाद्य संकट खड़ा हो सकता है।
1: भारत में भी भूमि क्षरण और जल संकट की एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में सूखे की समस्या समय समय पर देखने को मिलती है। ऐसे में वर्षों तक जल संचयन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है।
0: इस अवसर पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान, सेमिनार्स, वृक्षारोपण कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां आयोजित की जाती है। इन प्रयासों का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि धरती की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है।
1: तो श्रोताओं, एक पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना और प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग करना, छोटे छोटे ये जो कदम है ये बेहद ज़रूरी है, लेकिन इन्हीं छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव भी आएगा। आइए इस विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, जल संसाधनों की रक्षा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

0: वैद्य ही एक छोटा सा सवाल। आज जब हम मोबाइल में टाइम देख सकते हैं तो लैपटॉप में देख सकते हैं और कार में भी देख सकते हैं, लेकिन लोग आज भी घड़ी क्यों पहनते हैं?
1: सच कहूँ तो पहले मुझे भी लगता था कि वॉच सिर्फ टाइम देखने के लिए होती है, लेकिन अब लगता है कि वॉच टाइम से ज़्यादा पर्सनालिटी दिखाने के लिए पहनी जाती है।
0: बिल्कुल, और यही बात मुझे हॉरोलॉजी इंडस्ट्री की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर कोई कहे कि कुछ लोग ऐसी घड़ियां बनाते हैं जिनके लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, तो मुझे सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है।
1: और शायद बहुत से लिसनर्स पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, हॉरोलॉजी। दरअसल हॉरोलॉजी वह विज्ञान और कला है जो घड़ियों और समय मापने वाले यंत्रों के अध्ययन, निर्माण और रखरखाव से जुड़ी होती है। यानी सिर्फ वॉच बनाना ही नहीं, उसे डिज़ाइन करना, असेंबल करना, रिपेयर करना और उसकी प्रिसीजन को बनाए रखना भी हॉरोलॉजी का हिस्सा है।
0: अगर वैसे ही हम पीछे देखें तो समय को देखने के लिए हमें रिस्ट वॉच की ज़रूरत होती थी, और कभी लोग सूरज की दिशा को देखकर समय का अनुमान लगाते थे, कभी सनडायल का उपयोग करते थे, फिर पॉकेट वॉचेस आई और धीरे धीरे रिस्ट वॉच दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ट्रेडिशनल मैकेनिकल वॉचेस को अपना अलग महत्व दिया जाता है। कई लग्जरी वॉचेस ऐसी होती है जिनमें सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं और उन्हें बनाने के लिए महीनों का समय लग जाता है। मतलब घड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं, क्राफ्टमैनशिप का भी उदाहरण होती है।
1: जी हाँ, और आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वॉच इंडस्ट्री अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स तक सीमित नहीं रही, कई स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं। आज डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स कस्टमाइज्ड वॉच

0: सस्टेनेबल वॉचेस और स्मार्ट वेयरेबल्स जैसे सेगमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी वॉच ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहे हैं
1: और यही स्टार्टअप कल्चर की खूबसूरती भी है। पहले किसी वॉच ब्रांड को शुरू करना बहुत ही कठिन माना जाता था, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स की मदद से नए एंटरप्रेन्योर्स भी मार्केट में अपनी जगह बना पा रहे हैं।
0: भारत में कई नई वॉच ब्रांड्स सामने आई हैं जो इंडियन डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसिंग पर फोकस कर रही है, और यूथ ऑडियंस भी अब सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं, इंडियन स्टार्टअप ब्रांड्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
1: और अगर आज की जनरेशन की बात करें तो स्मार्ट वॉचेस ने पूरे इंडस्ट्री लैंडस्केप को ही बदल दिया है। अब घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती।
0: जी हाँ, आज स्मार्ट वॉचेस में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, फिटनेस गोल्स, कॉलिंग, मैसेजिंग, जीपीएस नेविगेशन और डिजिटल पेमेंट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती है। यानी एक छोटी सी डिवाइस अब मिनी कंप्यूटर जैसा बन चुका है।
1: और यही वजह है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज भी वॉच मार्केट में लगातार निवेश कर रही है, क्योंकि वेयरेबल टेक्नोलॉजी आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर माना जा रहा है।
0: लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ लग्जरी वॉचेस भी डिमांड है वो भी कम नहीं हुई है। आज भी स्विट्जरलैंड की कई वॉच कंपनीज अपनी क्राफ्टमैनशिप और प्रिसीजन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
1: कई लग्जरी वॉचेस ऐसी होती है जो सिर्फ एसेसरीज नहीं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स मानी जाती है। कुछ रेयर वॉचेस की कीमत समय के साथ भी और बढ़ती जाती है।
0: और शायद यही इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात है। एक तरफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ सेंचुरीज पुरानी क्राफ्टमैनशिप, दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
1: और शायद कई युवाओं को ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि हॉरोलॉजी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक करियर ऑप्शन भी है।
0: वॉच डिजाइन, वॉच रिपेयर, लग्जरी वॉच सर्विसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग और वेयरेबल टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। यानी क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग और प्रिसीजन, तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है।
1: तो हॉरोलॉजी सिर्फ घड़ियों की दुनिया नहीं, ये इनोवेशन, इंजीनियरिंग, क्राफ्टमैनशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया भी है।
0: और शायद यही वजह है कि आज जब हम अपनी कलाई पर घड़ी देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ समय नहीं, सदियों का विकास, तकनीक और इंसानी कौशल भी दिखाई देता है। और यही है हॉरोलॉजी की दिलचस्प दुनिया, जहां हर सेकंड के पीछे होती है एक कहानी।
2: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा,

चिन्मय, अभी हमने हॉरोलॉजी यानी घड़ियों की दुनिया की बात की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। घड़ियां तो हम सब देखते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें बनाते हैं, रिपेयर करते हैं

0: डिज़ाइन करते हैं और उनके अंदर के सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
1: सवाल तो बहुत अच्छा है वैदेही, और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, विशेषज्ञों को हॉरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ऑनेस्टली ये उन प्रोफेशंस में से एक है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका स्किल लेवल इतना हाई होता है कि कई लग्जरी वॉच कंपनीज इन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखती है।
0: मतलब जिस घड़ी को हम कुछ सेकंड देखकर आगे बढ़ जाते हैं, उसके पीछे किसी हॉरोलॉजिस्ट के कई घंटे, कई दिन और कई बार कई सालों की ट्रेनिंग भी हो सकती है। हॉरोलॉजिस्ट आखिर करते क्या हैं चिन्मय?
1: अगर आसान भाषा में समझे तो हॉरोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वॉचेस, क्लॉक्स और टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट्स के डिज़ाइन, असेंबली, सर्विसिंग, रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस का काम करता है। लेकिन इसे सिर्फ रिपेयर वर्क समझना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मॉडर्न हॉरोलॉजिस्ट इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्राफ्टमैनशिप का कॉम्बिनेशन होता है।
0: और शायद इसी वजह से इस प्रोफेशन को प्रिसीजन बेस्ड करियर्स में गिना जाता है, क्योंकि इमेजिन कीजिए किसी लग्जरी मैकेनिकल वॉच के अंदर 100, 200 या कई बार 500 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उन सबको परफेक्टली काम करना होता है।
1: एक टाइनी स्प्रिंग, एक गियर और एक बैलेंस व्हील में छोटी सी गड़बड़ी और पूरे वॉच को वो प्रभावित कर सकती है, यानी यहाँ पेशेंस और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत ज़रूरी है।
0: जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में हॉरोलॉजी सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि इसे एक आर्ट का फॉर्म माना जाता है।
1: दुनिया की कई प्रेस्टिजियस लग्जरी वॉच ब्रांड जैसे रोलेक्स, पटेक, ओमेगा, एड्यूमार्स और जैगर जैसी कंपनीज हाईली ट्रेंड हॉरोलॉजिस्ट पर निर्भर करती है। इन ब्रांड्स की रेपुटेशन ही प्रेसिजन पर टिकी होती है।
0: और शायद यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड हॉरोलॉजिस्ट की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर भी बनी रहती है, क्योंकि हर कोई लग्जरी वॉच तो खरीद सकता है, लेकिन हर कोई लग्जरी वॉच को समझ और मेंटेन नहीं कर सकता है।
1: और अब सवाल आता है कि यूथ एम्पावरमेंट में हॉरोलॉजिस्ट को क्यों शामिल किया गया है?
0: क्योंकि आज के समय में करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या गवर्नमेंट सर्विस तक सीमित नहीं है। नई जनरेशन नीश करियर्स की तरफ भी बढ़ रही है और हॉरोलॉजी उन्हीं यूनिक करियर्स ऑप्शंस में से एक है।
1: बिल्कुल वैदेही, अगर आज किसी को मैकेनिक्स पसंद है, माइक्रो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, प्रिसाइजन वर्क अच्छा लगता है और पेशेंस भी है, तो हॉरोलॉजी एक शानदार फील्ड उनके लिए हो सकती है।
0: और आज टेक्नोलॉजी के कारण अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ गई हैं। अब सिर्फ ट्रेडिशनल वॉचेस ही नहीं, स्मार्ट वॉचेस, वेयरेबल डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर्स और हाइब्रिड वॉचेस का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है।
1: एक अच्छा हॉरोलॉजिस्ट बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, फोकस और डिसिप्लिन भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई घंटों तक छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर हमें काम करना पड़ता है।
0: जी हाँ, और शायद यही इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। यहाँ स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रिसीजन की होती है। काम जल्दी नहीं, सही होना चाहिए।
1: और यही सीख जीवन में भी काम आती है, क्योंकि सफलता हमेशा तेजी से नहीं मिलती। कई बार बारीकी से किया गया काम ही हमें सबसे बड़ा परिणाम देता है।
0: आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लग्जरी वॉचेस और प्रिसीजन टाइम पीसेस की डिमांड बनी हुई है, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन क्राफ्ट्समैनशिप की वैल्यू भी खत्म नहीं हो रही है।
1: और शायद यही हॉरोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रोफेशन ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलता है। एक तरफ सेंचुरीज की पुरानी वॉच मेकिंग टेक्निक्स है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न वेयरेबल टेक्नोलॉजी भी।
0: तो हॉरोलॉजिस्ट सिर्फ घड़ियों का विशेषज्ञ नहीं होता, वह प्रिसीजन, पेशेंस और परफेक्शन का विशेषज्ञ भी होता है।
1: और यूथ एम्पावरमेंट की दृष्टि से देखें तो ये हमें ये याद दिलाता है कि हर सफल कैरियर भीड़ वाले रास्तों से नहीं बनता। कई बार अलग रास्ते ही सबसे खास मंजिल तक पहुंचाते हैं। और शायद यही नई पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत भी है कि नई संभावनाओं को पहचानना और उन्हें अवसर में बदल देना।

0: पत्थरों में बसती कहानियाँ, खामोश दीवारों में छिपे इतिहास के राज और बादलों से बातें करती एक प्राचीन नगरी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के मांडू में, जहाँ हर स्मारक बीते युग की एक अनोखी दास्तां सुनाता है।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी मांडू की ओर। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट मांडू भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का एक अद्भुत उदाहरण है।
0: विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा मांडू कभी मालवा की राजधानी हुआ करता था। यहाँ लगभग 61 ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, जिनमें महल, मस्जिदें, मकबरे, बावड़ियाँ और किले शामिल हैं। मांडू अपने शानदार वास्तुकला, प्रेम कथाओं और जल संरक्षण प्रणालियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
1: मांडू के प्रमुख आकर्षणों में जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, होशांग शाह का मकबरा, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का मंडप भी शामिल है। जहाज महल दो जलाशयों के बीच स्थित होने के कारण पानी में तैरते जहाज जैसा दिखाई देता है, जबकि रानी रूपमती का मंडप नर्मदा घाटी के किनारे मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है।
0: इतिहासकारों के अनुसार मांडू में हिंदू, अफगान और इस्लामिक स्थापत्य शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ की उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, विशाल तालाब और बावड़ियाँ मध्यकालीन इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट मिसाल है।
1: ईयर 1998 से मांडू के स्मारक का समूह यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, जो इसकी वैश्विक संस्कृति को महत्वता को दर्शाता है। मानसून के मौसम में मांडू का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। बादलों से गिरे महल, हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और प्राचीन स्मारक का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है, जो पर्यटकों के लिए बेहद ही मन को भाने वाला माना जाता है।
0: मांडू केवल स्मारकों का समूह नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह हमें इतिहास से जुड़ने, अतीत को समझने और अपनी धरोहर को संजोने की प्रेरणा भी देता है। तो अगर आप इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के शौकीन हैं, तो मांडू आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वैसे ही कभी कभी मुझे लगता है कि किसी इंसान की असली पहचान उसके नाम से नहीं, उसके प्रभाव से होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी सिर्फ उनके जीवन काल तक महसूस नहीं होती, उनके जाने के बाद भी उनका काम लोगों के बीच में जीवित रहता है।
4: बिल्कुल चिन्मय, और खास बात यह है कि ऐसे लोग सिर्फ एक फील्ड तक सीमित नहीं रहते, वो अपने समय को प्रभावित करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी शख्सियतों की जिनकी जनरेशन अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी कला और अपनी आवाज से लाखों लोगों तक अपनी पहचान बनाई।
3: अगर आसाम के सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो एक नाम बार बार सामने आता है, वो है ज्योति प्रसाद अग्रवाल। उनका जन्म 17 जून 1903 को आसाम के दिलब्रुगढ़ जिले के तालुम्बरी टी स्टेट में हुआ था, और शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज यानी कि 17 जून को ही उनकी जयंती भी मनाई जाती है।
4: और चिन्मय, उन्हें सिर्फ एक लेखक या कवि कहना बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा, वे कवि थे, गीतकार थे, नाटककार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और फिल्म निर्माता थे, और सबसे बड़ी बात, असमी संस्कृति को नई पहचान देने वाले विजनरीज में से एक थे। इसी वजह से उन्हें असम में प्यार से रूप कुंवर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य का राजकुमार।
3: और उनकी सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि थी झूठ मोटी फिल्म। 1935 में बनी इस फिल्म को आसामी सिनेमा की पहली फिल्म माना जाता है। आज जब मोबाइल फोन से भी फिल्म शूट हो जाती है, उस दौर में फिल्म बनाना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था, लेकिन ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसे पूरा भी किया।
4: और सिर्फ सिनेमा ही नहीं, उन्होंने असमीज म्यूजिक को भी नई दिशा दी। उनके लिखे हुए गीत आज ज्योति संगीत के नाम से जाने जाते हैं और असम की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। आज भी उनके गीत संगीत कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों में सुनाई देते हैं।
3: इतना ही नहीं, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और जेल भी गए, यानी कला, साहित्य और देशभक्ति तीनों में उनका योगदान साथ साथ चलता रहा।
4: और शायद यही वजह है कि आज भी असम में ज्योति प्रसाद को सिर्फ कलाकार नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी याद किया जाता है। दुर्भाग्य से उनका निधन काफी कम उम्र में 17 जनवरी 1951 को हो गया था, लेकिन लगभग 48 ईयर्स की एज में भी उन्होंने जो विरासत छोड़ी, वो आज 70 ईयर्स बाद भी जीवित है।
3: अब बात करते हैं एक ऐसी ही कलाकार जिनकी आवाज़ सुनते ही लोग पहचान जाते हैं, सोना मोहपात्रा की। उनका जन्म 17 जून 1976 को ओडिशा के कटक में हुआ, यानी आज का दिन उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है।
4: और उनकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत संगीत से नहीं की थी। उन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एमबीए भी किया और कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन दिल कहीं और था और वो जगह थी संगीत।
3: और यही बात यूथ को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि आज बार जब जिंदगी हमें एक रास्ते पर ले जाती है, लेकिन पैशन किसी दूसरे रास्ते पर बुला रहा होता है। सोना मोहपात्रा ने वही किया जो उनका दिल कह रहा था।
4: इसके बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उनके गाए हुए गाने अंबर सरिया, नैना, बहारा और कई इंडिपेंडेंट ट्रैक्स काफी लोकप्रिय हुए। उनकी आवाज में एक अलग इंडिविजुअलिटी महसूस होती है।
3: और शायद इसी वजह से वे सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं बनी रही, उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक को काफी बढ़ावा दिया। जब अधिकांश लोग सिर्फ फिल्मों पर फोकस कर रहे थे, तब सोना ने अपनी अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाई।
4: और चिन्मय, एक और बात जो उन्हें अलग बनाती है, वो है उनकी बेबाकी। वे सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। कई बार उनकी बातें चर्चा का विषय भी बनती है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बात खुलकर रखने की कोशिश की है।
3: उनकी इसी स्वतंत्र सोच और योगदान के लिए उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया गया, लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही है कि उन्होंने अपनी पहचान किसी के जैसी नहीं बनाई, बल्कि खुद की एक अलग पहचान बनाई।
4: अगर गौर करें तो ज्योति प्रसाद अग्रवाल और सोना के बीच लगभग 7 दशकों का अंतर है। एक ने शुरुआती भारतीय सिनेमा और साहित्य को दिशा दी, दूसरी ने आधुनिक भारतीय संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई।
3: लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई देती है, और वो है अपनी कला का उपयोग सिर्फ

0: प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि समाज से जुड़ने के लिए करना। एक ने गीतों, फिल्मों और साहित्य से लोगों को जोड़ा तो दूसरी ने संगीत और अपने विचारों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई।
1: तो चाहे असम के सांस्कृतिक इतिहास की बात हो या आधुनिक भारतीय संगीत की, इन दोनों नामों ने अपने अपने क्षेत्र में एक अलग छाप छोड़ी है।
0: और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ अपने काम से नहीं जाने जाते बल्कि उस प्रेरणा के लिए याद रखे जाते हैं जो वो दूसरों को देकर जाते हैं।
1: और यही होती है एक सच्ची शख्सियत की पहचान।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वैसे ही खेल की दुनिया में चैंपियंस तो बहुत आते हैं, लेकिन लेजेंड्स बहुत ही कम बनते हैं। क्योंकि चैंपियन वो होता है जो कुछ मैच जीत ले, लेकिन लेजेंड वो होता है जिसका नाम उसके रिटायरमेंट के बाद भी नई जनरेशन को सुनाता रहे।
1: बिल्कुल चिन्मय, और शायद किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही होती है कि लोग सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स याद ना रखें बल्कि उसकी जर्नी को भी याद रखें। क्योंकि मेडल्स जीतना मुश्किल है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है।
5: और आज हम बात करेंगे ऐसे ही खिलाड़ियों की जो 3 अलग अलग देशों से आते हैं, 3 अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, लेकिन अपने खेलों में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो उन्हें आज भी लेजेंड की कैटेगरी में रखता है।
1: जी हाँ, चिन्मय, अगर विमेंस टेनिस की बात की हो और वीनस विलियम्स का नाम ना आए तो डिस्कशन अधूरा लगता है। वीनस विलियम्स का जन्म जो है वो आज के दिन यानी 17 जून को 1980 को लिनवुड कैलिफोर्निया USA में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि आज उनका बर्थडे भी है।
5: और शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वीनस और सेरेना विलियम्स की सफलता के पीछे उनके पिता रिचर्ड विलियम्स की प्लानिंग और मेहनत का भी बड़ा योगदान था। उन्होंने बचपन से ही दोनों को बहनों को जो है टेनिस और की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था।
1: लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के

0: बाद वीनस ने जो किया वो अपने दम पर किया। 1990s के आखिर और 2000s के शुरुआती वर्षों में वीनस विमेंस टेनिस की सबसे डोमिनेंट खिलाड़ियों में गिनी जाती थी। उनकी हाइट, स्पीड और पावरफुल सर्विस ने जो है विमेंस टेनिस का खेल ही बदल दिया।
1: अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स जीते। इसके अलावा सेरेना विलियम्स के साथ मिलकर 14 ग्रैंड स्लैम वुमेंस डबल टाइटल्स भी अपने नाम किए। और सबसे बड़ी बात, दोनों बहनों ने ग्रैंड स्लैम डबल्स फाइनल्स में कभी हार का सामना नहीं किया।
0: और ओलंपिक्स में भी वीनस का रिकॉर्ड शानदार रहा। उन्होंने कुल 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता। उन्हें ओलंपिक हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर में गिना जाता है।
1: लेकिन उनकी कहानी सिर्फ ट्रॉफीज की नहीं रही। 2011 में उन्हें एक ऑटोइम्यून डिसीज का पता चला। इस बीमारी में शरीर जल्दी थक जाता है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। लेकिन वीनस ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लाइफस्टाइल को बदला और फिर कोर्ट में वापसी की।
0: और शायद यही वजह है कि वीनस विलियम्स सिर्फ चैंपियन नहीं, रेसिलेंस और डिटर्मिनेशन की भी एक मिसाल मानी जाती है।
1: और अब बात करते हैं एक ऐसी खिलाड़ी की जिनका नाम सुनते ही इंडियन टेनिस की पूरी कहानी याद आ जाती है, जिनका नाम है लैंडर पीस। उनका जन्म 17 जून 1973 को कोलकाता में हुआ था। स्पोर्ट्स उनके परिवार में पहले से था। उनके पिता यानी कि डॉक्टर वेस पीस इंडियन हॉकी टीम के सदस्य रहे और ओलंपिक ब्रोंज भी जीत चुके थे। और उनकी माता जेनिफर पीस इंडियन बास्केटबॉल की टीम में कैप्टन रह चुकी थी।
0: मतलब स्पोर्ट्स लिटरेसी उनके डीएनए में था और शायद यही वजह थी कि लैंडर ने बहुत ही जल्दी स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया।
1: 1996 अटलांटा ओलंपिक्स भारतीय खेल इतिहास के लिए बेहद खास रहे, क्योंकि लैंडर पीस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उस समय भारत के लिए ओलंपिक मेडल बहुत ही कम आते थे, इसलिए उनकी उपलब्धि पूरे देश में गर्व का विषय बनी।
0: लेकिन अगर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो थी डबल टेनिस। लैंडर पीस ने अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। इनमें 8 मेंस डबल ग्रैंड स्लैम्स और 10 मिक्स डबल्स एंड ग्रैंड स्लैम्स शामिल थे।
1: और ये उपलब्धि उन्हें भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में शामिल करती है। उन्होंने महेश भूपति, मार्टिना और मार्टिना हिंग्लिस जैसे कई बड़े खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप्स की।
0: अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानित और प्रतिष्ठित अवार्ड से उन्हें सम्मान दिया गया है। और ऑनेस्टली लैंडर पीस की सबसे बड़ी पहचान उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा। इंजरीज आई, पार्टनरशिप्स बदली, लेकिन उन्होंने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा।
1: अब चलते हैं बेल्जियम, जहाँ 17 जून 1945 को जन्म हुआ एक ऐसे खिलाड़ी का जिसने आज भी साइकिल हिस्ट्री का सबसे महान साइकिलिस्ट माना जाता है, जिनका नाम है एडी मेरिक।
0: और उनका निकनेम सुनोगे तो थोड़ा फनी लगेगा, उन्हें कहा जाता है द कैनिबल। लेकिन इनकी वजह बहुत डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। वो सिर्फ रेस जीतना नहीं चाहते थे बल्कि और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। वो हर रेस जीतना भी चाहते थे।
1: उनकी विनिंग मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि उनके कॉम्पिटिटर्स खुद कहते थे कि अगर कोई रेस है तो एडी उसे जीतने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जीत के भी बताएंगे।
0: अचीवमेंट सुनोगे तो समझ आ जाएगा कि लोग उन्हें ग्रेटेस्ट साइक्लिस्ट क्यों कहते हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में 525 से ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल की। उन्होंने 5 टूर दे फ्रांस टाइटल्स, 5 गिरो दे टाइटल्स और 1 वेटला एस्पाना टाइटल भी जीता।
1: और सिर्फ चैंपियनशिप्स ही नहीं, उन्होंने साइकिलिंग में लगभग हर मेजर रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कराया है। उनकी एंड्योरेंस, स्टेमिना और कंसिस्टेंसी आज भी साइकिलिंग वर्ल्ड में बेंचमार्क मानी जाती है।
0: 1970s में एडी मार्क्स का नाम साइकिलिंग का पर्याय बन चुका था। और रिटायरमेंट के कई दशकों के बाद भी जब साइकिलिंग लेजेंड्स की बात होती है तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है।
1: बिल्कुल, अगर गौर करें तो वीनस विलियम्स, लैंडर पीस और एडी मेरिक तीनों अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं और अलग अलग दौर में खेलते हैं, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है उनकी एक्सीलेंस।
0: जी हाँ, तो चलिए अब इसी के साथ अब घड़ी की ओर देख रहे हैं तो हमें इजाजत नहीं दे रहा है हमारा समय, तो चलिए इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वैदेही और मेरे साथ हैं चिन्मय। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युववाणी अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। ढलती हुई शाम अपने साथ सुकून की चादर लेकर आई है और इसी सुकून के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त कीर्ति और अगले कुछ पलों तक संगीत का ये खूब

खूबसूरत सफर रहेगा आपके साथ। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं केदारनाथ फिल्म से असी स्कोर की आवाजें हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है रब निभा दी जोड़ी, और इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान ने, संगीत सलीम सुलेमान का है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोतो, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत, सनम तेरी कसम फिल्म से, और इस गीत को गाया है अंकित तिवारी और पलक मुच्छल ने।

0: मिस सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा पद्मावत फिल्म से, और इस गीत को गाया है शिवम पाठा, कुणाल पंडित और साथियों ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाती है। साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया।

0: गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसकी डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए जन आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में 1 अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल निबोन केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
3: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की वहां लड़े थे थोड़े से

0: मेवाड़ के वीर मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से हैं, बाद में भी रहेंगे।
1: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम

कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहनराम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी, कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में अलवर की टीम विजेता रही और कोटा की टीम उपविजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम विजेता और अलवर की टीम उपविजेता रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।
अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के

0: जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉलीहाउस मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपयारी प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांच रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर तीनो। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख हर वन याद करी जिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY रातेत करीब 2400 करोड़ रुपयारी रकम पात्र लोगों ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लारला साल अगस्त महीना माए चलाई जी।

तुम्हारे बगैर जीना क्या, जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। सांसों के बिना शायद कुछ पल मैं जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम, हां तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं जिंदगी से बढ़कर चाहने लगा हूं। मेरा आज, मेरा कल, मेरे दिन, मेरे पल सिर्फ तुम्हारे दम से। मेरी पूजा में, मेरी दुआओं में, मेरी खामोशियों में, मेरी सदाओं में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तारे टूट जाएंगे,

चांद बुझ जाएगा, वक्त यहीं ठहर जाएगा, लेकिन लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण बुझने तक, आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हां प्रिया, मैं तुम्हारा

दिन मेरे पल सिर्फ तुम्हारे दम से, मेरी पूजा में, मेरी दुआओं में, मेरी खामोशियों में, मेरी सदाओं में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तारे टूट जाएंगे, चांद बुझ जाएगा, वक्त यहीं ठहर जाएगा, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण बुझने तक, आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की

ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

ये सोच लो, वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वीमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन

0: परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।